मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई 2026। इस समय 5:57 होने को हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। आइए हिंदी में समाचार सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

0: नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी

1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। आइए करते हैं प्रभु का सुमिरन भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना के माध्यम से।

आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए लता मंगेशकर के गायक स्वर में ये भक्ति रचना सुनते हैं।

भक्ति मार्ग पर चलने वाला आदर्श जीवन पुरुष शांति के समुद्र, प्रेम के अटूट भंडार और सुख के अपरिमित स्तोत्र बन जाते हैं। और जब यही भक्तिवान पुरुष किसी के संपर्क में आता है तो सामने वाला भी शांति, प्रेम और सुख प्राप्त करता है और उसका चित्त भली भांति स्थिर हो जाता है।

पंडित जसराज के गायन में अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। दीन दयालु दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा, हिमतम करी के हरी करमाली, दहन दोष दुख दुर तिरुजाली, वेद पुराण प्रगट जस जागे, तुलसी राम भक्ति बर मांगे, करो चितवन हमारा एकाग्र, हे प्रभु यही विनती है हमारी।

हरिओम शरण की गायक स्वर में अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी। आइए अब विपिन सचदेवा को सुनते हैं इस आखिरी भक्ति रचना में।

कार्यक्रम विवरण में आइए हम आपको बताते हैं कि आज की हमारी तीनों सभाओं में क्या कुछ होने वाला है खास, क्या कुछ कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:40 पर आप सुनिएगा प्रभु श्री राम जी के जीवन चरित पर आधारित रामचरित मानस गान। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम खेती में आज होगा 6:50 पर। सदाबहार नगमों का आनंद लीजिएगा 7:00 से। आबोहवा पर्यावरण आधारित इस कार्यक्रम का समय रहेगा 7:45।

किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम खेती में आज होगा सुबह 6:50 पर सदाबहार नगमों का आनंद लीजिएगा सुबह 7 बजे से। आबो हवा पर्यावरण आधारित इस कार्यक्रम का समय रहेगा 7:45। महात्मा गांधी जी के जीवन चरित्र पर आधारित आत्म कथाओं का प्रसारण हम करेंगे गांधी दर्शन में। समय होगा 7:50। 8:30 पर आप सुनिएगा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर, प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 पर। यह कार्यक्रम स्पॉन्सर है NCERT द्वारा। आज की हमारी तीनों ही सभाओं में फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे, 1:45 पर, शाम को 6:05 से रात्रि 8 बजे और रात्रि 10 बजे। राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम घोखड़ा आप सुन पाएंगे सुबह 11 बजे से।

सुगम संगीत का लुत्फ आप ले सकेंगे सुबह 11:30 से और रात्रि 9:15 से। दोपहर 1:05 पर हम लेकर आएंगे हमारे सखियों का मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत।

विकास चर्चा में दोपहर 2:10 पर आप सुनिएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जानकारी। 2:30 का समय रहेगा कार्यक्रम कृषि जगत का, जिसमें किसान रिवाद में विषय होगा जलवायु परिवर्तन का खेती पर प्रभाव। साथ ही आप जानकारी सुन पाएंगे विदेशी सब्जी उत्पादन से लाभ, इस विषय पर जलवायु अनुकूलन और जैव विविधता संदेश भी आपको सुनवाए जाएंगे। साथ ही आनंद लीजिएगा राजस्थानी लोकगीतों का।

हमारी सांध्यकालीन सभा का आगाज करेंगे युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी के साथ, जिसमें होगी युवा और उद्योग जगत की बातें। शौर्य गाथा सुनेंगे लायंस नायक अल्बर्ट इक्का की। शेयर बाजार होगा, खेल जगत के समाचार होंगे, साथ ही विशेष शख्सियत के बारे में आपको बतलाया जाएगा। किसान भाई अपना दैनिक कार्यक्रम सुन पाएंगे खेती और घर, जिसमें चौपाल री बात होगी पर्यावरण संरक्षण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा। इस विषय पर एग्रोमेंट एडवाइजरी के साथ साथ आपको जल जीवन मिशन योजना के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही बातचीत करेंगे भोजन में फाइबर का उपयोग। इस विषय पर शास्त्रीय संगीत का आनंद आप लीजिएगा रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी जयपुर अजमेर से। आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी 6:43 पर। तो श्रोताओं, ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 266.66 यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान पाठ। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है, भाग संख्या है 93।

राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित सहस्रों राजाओं से भी जब शिव का धनुष टस से मस ना हुआ तो ऐसा लगा कि जनक जी की मनोहरिणी कन्या का वरण करने वाले की ब्रह्मा ने सृष्टि ही नहीं की। प्राण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, अतः क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। राजा जनक का नैराश्यपूर्ण ये कथन सुनकर लक्ष्मण को क्रोध हो आया। जहां एक भी रघुवंशी होता है वहां कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलता जैसे अनुचित वचन जनक जी ने कहे हैं। श्री राम के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना कर पाया तो फिर कभी धनुष और तर्कस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लक्ष्मण के क्रोध भरे वचन सुनकर पृथ्वी डगमगा उठी, दिक्पाल कांप उठे, किंतु सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और राजा जनक सकुचा गए। श्री राम ने अनुज को शांत होने का संकेत करके अपने पास बिठा लिया। तब मुनि विश्वामित्र ने अत्यंत प्रेम सनी वाणी में कहा, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़कर जनक जी का संताप मिटाओ।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान पाठ, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव 266.6 यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए अब प्रस्तुत है उनका अपना दैनिक कार्यक्रम खेती में आज।

खेती में आज कार्यक्रम होने वाला हगलाई किसान भाई बहना ने नानू भाई रो घणो घणो राम राम सा। अणी टेम किसान भाई जो है खेती बाड़ी में कई काम कर सके। वनडी बात करा तो किसान भाई अणी टेम हरी खाद वाली फसला जो है वणान ले सके। दलहनी और गैर दलहनी फसला ने वणारी वनस्पति वृद्धि काल में सही टेम पे मिट्टी उर्वरता और उत्पादकता बढ़ावरे वाते जुताई करने मिट्टी में अपघटन रे ले दबाणो जो है वो हरी खाद देणो वे है। भारतीय कृषि में दलहनी फसलारो महत्व शुरू रियो है और आपा जाना कि दलहनी फसलारी जड़ा में उपस्थित सहजीवी विषाणु ग्रंथियां वातावरण युक्त नाइट्रोजन ने यौगिकीकरण द्वारा पौधा ने उपलब्ध करवावे। आश्रित पौधा रे उपयोग रे बाद जो नाइट्रोजन मिट्टी में शेष रही जावे वरने आगामी फसल रे उपयोग में आपा ले सका। हाँ, दलहनी फसला अपने विशेष गुण जीतर की भूमि में उर्वरा शक्ति बढ़ावा, प्रोटीन री प्रचुर मात्रा रे कारण पोषकीय चारा उपलब्ध करवावा और मिट्टी क्षरण रे अवरोध रे रूप में भी अपनो विशेष महत्व राखे है। हरी खाद रे लारे लारे फसलारी अन्य उपयोग में लायो जाई सके। अंडे वाते ढेचा या सनई री वावणी भूमि री उर्वरा शक्ति बढ़ावा रे वाते बहुत ही आवश्यक वे है। अणा फसला में 50-60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्राप्त वेवे है। हरी खाद रे वाते दलहनी फसला में ढेचा, सनई, मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर, मटर, लोबिया, मोट, खेसारी तथा कुलथी मुख्य है। आपा देखा कि जायद में हरी खाद रे रूप में अधिकतर ढेचा, सनई, उड़द और मूंग रो उपयोग आपा करा हाँ। हरी खाद रे वाते उगाई जावाली फसला रो चयन भूमि री जलवायु तथा वनडे उद्देश्य ने ध्यान में रखता करनो चावे। हरी खादरी फसला में जो आपा देखा तो हरी खादरे वाते ऐसी फसल वेणी चावे जण में तना है, शाखा है, पत्तिया है, कोमल और अधिक वे ताकि मिट्टी में शीघ्र अपघटन वही ने अधिक व अधिक जीवांश और नाइट्रोजन मिल सके और फसल जो है शीघ्र वृद्धि करवा वाली वे। फसल सूखा अवरोधी रे लारे लारे जलमग्नता ने भी सहन करवा वाली वेणी चावे। फसला मूसला जड़ वाली वे ताकि गहराई में पोषक तत्व और अवशोषण वैसे और क्षारीय और लवणीय मृदा में गहरी मिट्टी जो है वे गहरी जड़ा वाली फसला अंतर जल विकास ने बढ़ावा में भी आवश्यक वे। रोग और कीट कम लागे है तथा बीज री उत्पादन क्षमता में वृद्धि वे। ढेचा या सनई रे वावणी करवा रे वाते 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज री आवश्यकता वे। वावणी रे पहला बीज ने 12 घंटा पानी में भिगो रे बाद बीज जो वे अंकुरण जल्दी वे। हरी खादरी फसला वावणी रे 35-40 दना में पलटने योग्य वही जावे। अतः खरीफ में धान री रोपाई रे टेम ध्यान राखता लगा ढेंचा, सनई और लोबिया री वावणी करनी है। हरी खादरी विभिन्न फसला री उत्पादन क्षमता, जलवायु, फसल वृद्धि और अणा सब कृषि क्रिया पर निर्भर करे है। किसान भाई बहन अबार चावे तो अणी टेम पे अपनी मिट्टी रो परीक्षण भी करे सके। मिट्टी परीक्षण करवा रे वाते यो अबार हाउ टेम है। मिट्टी री जांच या परीक्षण अन्न में उपलब्ध पोषक तत्वारी मात्रा, पीएच मान और सूक्ष्म जीवारी संख्या निर्धारित करवा रे वाते नमूना रो एक रासायनिक जांच या परीक्षण है। यो परीक्षण करने किसान भाई जो है मिट्टी री वर्तमान स्थिति ने जानने वंडी स्थिति सुधारवा रे वाते उचित कदम ले सके। सही अनुपात में आवश्यक पोषक तत्व रो चयन भी किसान भाई कर सके है। किसान भाई अपने खेत री मिट्टी रे अनुसार फसल चक्र रो चयन करने भी ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। मिट्टी नमूना लेवा रे वाते किसान भाई बहना ने चावे कि एक हेक्टर खेत में लगभग 15 स्थानों 15 सेंटीमीटर गहराई तक खुरपी री सहायता खेत री मिट्टी जो है वंडो नमूनो इकट्ठो कर ले। पचे मिट्टी रो नमूनो इकट्ठो कर्या कड़े खेत रे किनारे कणी खाद वाला स्थान, छायादार स्थान और सिंचाई नाली रे पास वाली मिट्टी रो नमूनो अपने नहीं लेणो है। एक ही खेत में इकट्ठा किया गया नमूना जो है वे आपस में मिलाने अंत में वणा में 500 ग्राम मिट्टी एक कपड़ा री थैली में भरने पूरा विवरण रे लारे देखो प्रयोगशाला में किसान भाई भेज सके। नमूना री जांच रे केड़े मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड जो है वो किसान भाई अवश्य प्राप्त करे ताकि अगली खरीफ री फसल में मिट्टी स्वास्थ्य रे आधार पर जो खाद और उर्वरक प्रयोग किया जाना है वणा री जानकारी किसान भाई बहना ने आसानी वही सके। अबाणु री अणी टेम पे किसान भाई

देखो अपने फसलां जो है वणा ने काट ली दी है, और अणी टाइम पे अगर वे ग्रीष्मकालीन जुताई भी करे तो वणा रे वाते ग्रीष्मकालीन जुताई जो है लाभदायक हो सके। ग्रीष्मकालीन जुताई में देखो गर्मी री जुताई जो है मिट्टी पलटवा वाला हलू करने खेत नी मिट्टी जो आपने वे वह ऊपर नीचे बही जावे है। अणी जुताइयों जो ढीला पड़े है वे धीरे धीरे हवा और बरसात रे लाड़े पानी में टूटता रहे। अंडे ला रही जुताइयों कहवे कि मिट्टी री जो सतह है वन पे पड़ी फसल अवशेष री पत्तियां पौधा री जड़ा और खेत में उग्या लगी जो खरपतवार वे वह अणी पलटवाऊ कहवे कि नीचे दब जावे है। जो सड़वारे बाद खेत री मिट्टी में कार्बनिक खाद री मात्रा में बढ़ोतरी करे, अणु अपनी मिट्टी री उर्वरा क्षमता जो है वह बढ़े, लारे लारे भौतिक दशा और मिट्टी री संरचना में भी सुधार वे है। गर्मी री जुताई में देखो अगर आपा देखा तो अणु किसान भाई बहना ने नरेहारा लाभ है। अगर लाभ री बात करा तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जो वे वणारी बढ़ोतरी वेवे है। मिट्टी रे पलट जावा जलवायु रो प्रभाव भी देखो सुचारू रूप मिट्टी में वेवा वाली प्रतिक्रिया पर पड़तो रहे, और वायु और सूर्य रे प्रकाश री सहायता मिट्टी में उपलब्ध खनिज अधिक सुगमता रे लारे पौधा ने आहार रूप में प्राप्त वेतो रहे। गर्मी री जुताई रोग और कीट नियंत्रण में भी सहायक वे, हानिकारक कीट तथा रोगारी रोगकारक भूमि री सतह पर आई जावे है और तेज धूप रे कारण वनारा अंडा जो वे भी नष्ट हो जाए और इल्या कीट आदि जो है वे भी मर जावे है। गर्मी री जुताई मिट्टी में जीवाणु री सक्रियता ने भी बढ़ावे या दलहनी फसला रे वाते अधिक उपयोगी सिद्ध वे है। तो आने टाइम पे किसान भाई गर्मी री जुताई करे तो वणु खरपतवार नियंत्रण में भी वणा ने सहायता प्राप्त हुए, क्योंकि खरपतवार बीज जो है वे गर्मी और धूप रे कारण नष्ट वही जावे है। बारानी परिस्थितियों में वर्षा रे पानी रा अधिकतम संचय करवा रे वाते भी गर्मी में गहरी जुताई करनो आवश्यक वे। किसान भाई बहन आपा सब जाना है कि गर्मी में जुताई करवाऊ कहवे कि बरसात रो पानी खेत में अधिक मात्रा में समाये, और गर्मी री जुताई करवाऊ मिट्टी रो जो कटाव वे वन में भी कमी आवे है। गर्मी री जुताई में गोबरी खाद और अन्य कार्बनिक पदार्थ भूमि में अच्छी तरह मिल जावे जणु की पोषक तत्व शीघ्र ही फसला ने उपलब्ध वही जावे। तो अणी टाइम पे किसान भाई बहन अणा सब वातारो ध्यान रखेगा तो वणा में फसल में हव अच्छी आमद प्राप्त वेगा। तो देखो अबे घड़ी री आड़ी देखा तो कार्यक्रमों चालवारो आपनो टाइम वेरो, तो आज्ञा दो नानू भाई ने, राम राम सा।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती में आज, ये आकाशवाणी उदयपुर है।
1: जलवायु और जल, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ज्यादा बारिश और बाढ़ होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इन दोनों से पीने के पानी, सफाई और खेती के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान साफ पानी बहुत जरूरी होता है। पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित कम आमदनी वाले समुदाय होते हैं। क्या आप जानते हैं, 2020 में दुनिया के 26% लोगों के पास पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी की सुविधा नहीं थी। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 7 बजे हैं। पेश है सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चुपके चुपके फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे लता मंगेशकर और मुकेश ने गाया है।

लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में प्रेम पर्वत इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आइए अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं लव स्टोरी फिल्म से ये अगला गीत, जिसे आशा भोसले ने गाया है, धुन बनाई है SD बर्मन ने।

आशा भोसले और किशोर कुमार को आप सुन रहे थे फिल्म बंदिश में। आइए अब कार्यक्रम में अगला नगमा हम सुनते हैं।

0: तू समझ गई ना, रिलैक्स।
1: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्री
4: तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
6: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना?
5: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: आरबीआई कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: आकाशवाणी उदयपुर से प्रोग्राम चल रहा है सदाबहार नगमों का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं प्रेम कहानी फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे मुकेश और लता ने गाया है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आइए सुनते हैं।
9: कहा आपका ये बजा ही सही के हम

0: नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुड्ढू।
2: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।

पिघलता आसमान फिल्म के इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमों का ये सफर अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 266.6 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:45 हुए हैं। आइए गांधी जी के जीवन पर आधारित आत्मकथा सुनते हैं कार्यक्रम गांधी दर्शन में।

कांति दर्शन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को दिलीप शर्मा का नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम आपको पढ़कर सुनाते हैं गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से संस्मरण। आज का वृतांत चोरी और प्रायश्चित। अपने एक रिश्तेदार की सोहबत में मुझे सिगरेट पीने का शौक हुआ। हमारे पास पैसे न थे। सिगरेट पीने में कोई फायदा या उसकी गंध में कोई मजा तो हम दोनों में किसी को मालूम न होता था, पर हमें धुआं उड़ाने में ही कुछ मजा आता था। मेरे चाचा को इसकी आदत थी। उन्हें तथा औरों को धुआं उड़ाता देखकर हमें भी कश खींचने का शौक लगा। पैसा पास न होने के कारण हमने चाचा के पीकर फेंके हुए सिगरेट के टुकड़े चुराना शुरू किया, पर टुकड़े हर वक्त तो न मिल सकते थे और उनसे धुआं भी ज्यादा न निकलता था। अतः नौकर की जेब में पड़े 2-4 पैसों में से हम बीच बीच में एक आध पैसा चुराने और उससे सिगरेट खरीदने लगे, पर उन्हें रखे कहा। यह समस्या आई। यह भी समझता था कि बड़ों के सामने सिगरेट नहीं पीना चाहिए। ज्यों त्यों 2-4 पैसे थैले चुरा कर कुछ हफ्ते काम चलाया। इस बीच सुना कि एक पौधा होता है जिसका डंठल सिगरेट की भांति चलता है और पिया जा सकता है। हमने उसे लाकर धुआं उड़ाना शुरू किया, पर हमें संतोष न हुआ। अपनी पराधीनता हमें खलने लगी। बड़ों की आज्ञा बिना कुछ भी न हो सके, यह विशेष कष्टदायक हो गया। हम ऊब गए और आत्महत्या करने की ठान ली। पर आत्महत्या करे कैसे? जहर कहां से लाए? हमने सुना कि धतूरे के बीज खाने से मृत्यु होती है। हम जंगल में जाकर बीज ले आए। खाने के लिए शाम का समय निकाला। केदार जी के मंदिर की दीपमाला में घी चढ़ाया, दर्शन किए और फिर एकांत ढूंढा, पर जहर खाने की हिम्मत न हुई। तत्काल मृत्यु न हो तो मरने से क्या लाभ होगा? पराधीनता भोग ही क्यों न ले? फिर भी 2-4 धतूरे के बीज खाए। अधिक खाने की हिम्मत ही न पड़ी। हम दोनों मृत्यु से डरे। निश्चय किया कि चलकर राम जी के मंदिर में दर्शन करें और चुपचाप बैठे, आत्महत्या की बात मन से निकाल दे। मैंने समझ लिया कि आत्मघात का विचार करना सहज है, आत्मघात करना सहज नहीं। इस आत्महत्या के निश्चय का एक परिणाम यह हुआ कि हमारी झूठी सिगरेट चुराकर पीने और साथ ही नौकर के पैसे चुराने और उससे सिगरेट खरीद कर पीने की आदत ही जाती रही। बड़े होने पर मुझे कभी सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं हुई और सदैव मेरी धारणा रही कि आदत जंगली, गंदी और हानिकारक है। सिगरेट बीड़ी का इतना जबरदस्त शौक दुनिया में क्यों है, इसे मैं कभी समझ ही न सका। जिस रेल के डिब्बे में बीड़ी सिगरेट का अधिक धुआं उठता है, वहां बैठना मेरे लिए कठिन हो जाता। उस धुएं से मेरा दम घुटने लगता। सिगरेट के दोष के समय तो उम्र 12-13 बरस की रही होगी, शायद इससे भी कम, पर दूसरी चोरी के समय 15 साल का रहा होगा। यह चोरी मेरे मांसाहारी भाई ने सोने के कड़े के टुकड़े की थी। उन्होंने छोटा सा कोई 25 रुपए का कर्ज कर लिया था। हम दोनों भाई इसे चुकाने के चक्कर में थे। भाई के हाथ में सोने का ठोस कड़ा था, उसमें तोला भर सोना काट लेना कठिन न था। कड़ा कटा, कर्ज पट गया, पर मेरे लिए यह बात असह्य हो गई। इसके बाद मैंने कभी चोरी न करने का निश्चय किया। यह भी सोचा कि पिताजी के सामने से कबूल कर लेना चाहिए, पर जबान न खुलती थी। पिताजी मुझे पीटेंगे, इसका डर तो नहीं था। उन्होंने किसी दिन हम में से किसी भी भाई को मारा हो यह याद नहीं, पर स्वयं क्लेश करेंगे, कहीं अपना सिर पीट ले तो। पर मन ने यह कहा, यह खतरा लेकर भी दोष स्वीकार करना ही उचित है, इसके बिना शुद्धि नहीं होने की। अंत में मैंने पत्र लिखकर दोष स्वीकार कर लेने और माफी मांगने का निश्चय किया। मैंने पत्र लिखकर अपने हाथ से उन्हें दिया। पत्र में सब दोष स्वीकार किया और उसका दंड मांगा।

यह विनती की कि मेरे अपराध के लिए वह अपने को कष्ट में न डाले और प्रतिज्ञा की कि भविष्य में फिर ऐसा अपराध न करूंगा। मैंने कांपते हाथों यह पत्र पिताजी के हाथ में दिया। मैं उनके तख्त के सामने बैठ गया। इन दिनों वह पगंदर रोग से पीड़ित थे, इससे बिस्तर पर ही पड़े रहते थे, खाट के बदले तख्त काम में लाते थे। उन्होंने पत्र पढ़ा, आंखों से मोती की बूंदें टपकी, पत्र भीग गया। उन्होंने क्षण भर आंखें मूंद ली, पत्र फाड़ डाला और खुद पढ़ने को बैठे हुए सो पुनः लेट गए। मैं भी रोया, पिताजी की पीड़ा का मैं अनुभव कर सका। मैं चित्रकार होता तो आज भी उस दृश्य की पूरी तस्वीर खींच सकता था। आज भी इस तरह वह मेरी आंखों के सामने नाच रहा है। इन मुक्ता बिंदुओं के प्रेम बाण ने मुझे भेद दिया, मैं सिद्ध हो गया। इस प्रेम को तो अनुभवी ही जान सकता है। मेरे लिए यह अहिंसा का पदार्थ पाठ था। उस समय तो मैं उसमें सिवा पितृ प्रेम की ओर कुछ न देख सका था, पर आज मैं उसे शुद्ध अहिंसा का नाम दे सकता हूं। ऐसी अहिंसा के व्यापक रूप धारण कर लेने पर उसके स्पर्श से कौन अछूता रह सकता है। ऐसी व्यापक अहिंसा की शक्ति की नापतोल करना अशक्य है। ऐसी शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के प्रतिकूल थी। मैंने सोचा था कि वह क्रुद्ध होंगे, खरी खोटी सुनाएंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे। मैं समझता हूं कि उनके ऐसी अपार शांति रख सकने के कारण मेरे दोष को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लेना था। अधिकारी के सामने जो आदमी स्वेच्छापूर्वक खुले दिल से और फिर कभी न करने की प्रतिज्ञा के साथ अपना दोष स्वीकार कर लेता है, वह शुद्धतम प्रायश्चित करता है। मैं जानता हूं कि मेरे कबूल कर लेने से पिताजी मेरे विषय में निर्भय हो गए और उनका महान प्रेम और बढ़ गया। गांधी दर्शन कार्यक्रम में आज इतना ही। अगला वृत्तांत इसी दिन इसी समय अगले अंक में। तब तक नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे गांधी दर्शन, ये आकाशवाणी उदयपुर है। आइए सुनते हैं आबोहवा।
1: जलवायु उपशमन और अनुकूलन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। हम स्वच्छ ऊर्जा अपनाकर पेड़ों की कटाई रोककर और जंगल और मैंग्रोव जैसे प्राकृतिक इलाकों को सुधारकर जलवायु परिवर्तन का सामना कर सकते हैं। उपशमन का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करना। अनुकूलन का मतलब है इसके प्रभाव से बचने की तैयारी करना, जैसे कि भोजन, पानी और आपदा प्रबंधन को बेहतर करना, खासकर उन समुदायों के लिए जो इसके जोखिमों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन इन सभी कोशिशों के बावजूद भी कुछ नुकसान होना निश्चित है। यह एक डरावनी स्थिति है। अगर वर्तमान गतिविधि जारी रही तो इस सदी में वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ सकती है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु साक्षरता निष्कर्ष, यूनेस्को का एक संदेश। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और इसे नजरअंदाज करना इंसानों और धरती दोनों को खतरे में डालता है।

0: तापमान तेजी से बढ़ रहा है, मौसम और पर्यावरण तेजी से बिगड़ रहे हैं। अब कुछ करने का समय आ गया है। असली बदलाव सिर्फ नीतियां बनाने वाले कमरों में नहीं, बल्कि समुदायों, स्कूलों और घरों में भी शुरू होता है। यूनेस्को ने 10 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर सबके लिए कई भाषाओं में जलवायु साक्षरता से जुड़ी सामग्री तैयार की है। जलवायु विज्ञान को समझना हमें कार्यवाही करने की शक्ति देता है। आप भी जलवायु की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। आइए ज्ञान, एकता और आशा के साथ बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करें। यह यूनेस्को का संदेश था। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। यह संदेश यूनेस्को। प्रस्तावना। जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: आबोहवा में अभी आप सुन रहे थे जलवायु आधारित संदेश। हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। आइए आकाशवाणी दिल्ली से अब हम जुड़ते हैं और सुनते हैं समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, बस थोड़ी ही देर में।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इस

0: इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
1: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में

0: जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया, किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Home Minister Amit Shah says Center's high-level committee on artificial demographic changes to also assess requirement of law to tackle the issue. National Security Advisor Ajit Doval calls for decisive action against terrorism, says there cannot be double standards in fight against the menace. BJP appoints party presidents for Punjab, Haryana, Delhi and Tripura. Air India extends suspension of its flights to Israel till July end amid continued geopolitical uncertainties in West Asia. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Gujarat Titans in all-important qualifier 2 in New Chandigarh this evening. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required.

0: की अनमोल कहानियाँ, हर पंखुड़ी में छिपी हुई प्रकृति की प्यारी सी नादानियाँ, सवेरे की शीतल बयार में खिलते हैं ये हमारे सपने, जिन्हें पूरा करने संग चलते हैं हमारे अपने।
1: बिल्कुल, और आज के सफर में संग चलने के लिए अपने श्रोताओं के साथ लेकर आ गए हैं हम कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। और श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ मीनाक्षी।
0: और मैं हूँ संतोष।
1: तो श्रोताओं, आज बता दें कि डिजिटल और फन फ्राइडे में क्या कुछ खास लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो दिन की शुरुआत कैसे होगी?
0: दिन की शुरुआत होगी आज के दिन विशेष के साथ, जिसमें है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे और विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की भी हम बात करेंगे, और हम उन्हें याद करेंगे जिनकी है आज पुण्यतिथि, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को। साथ ही आईपीएल अपडेट और स्थानीय सूचनाएं भी हम हमारे श्रोताओं को बताएंगे।
1: और स्मार्ट जीवन में आधुनिक समय में नौतपा के दौरान खान पान दिनचर्या कैसी हो, इस पर बात करेंगे। फिल्में, शुक्रवार का दिन है तो इस सप्ताह रिलीज हुई फिल्में, कारोबार, महिला मुद्दों पर केंद्रित फिल्में और उनकी बातें, और इसी विषय पर यानी महिला मुद्दों पर जो केंद्रित फिल्में हैं उनमें आपकी कौन सी पसंदीदा फिल्म है, महिला सशक्तिकरण की फिल्मों पर आप अपनी राय हमें दे पाएंगे श्रोता संवाद के अंदर। और हमारे व्हाट्सएप मैसेज उस के लिए रहेंगे जिसमें आप मैसेज कर सकेंगे, नंबर रहेंगे 9462697568। तो कार्यक्रम जैसे जैसे चलता रहेगा और बातें करते रहेंगे। फिलहाल शुरुआत
0: एक अच्छे से गीत के साथ।

गीत की शुरुआत तो हो गई, कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई, लेकिन खास दिन आज क्या है तो एक कहता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ये दिवस सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिन उन सभी महिलाओं पुरुषों को समर्पित है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य पुलिस या नागरिक के रूप में कार्य किया है। और वर्षों से संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों ने दुनिया की सबसे नाजुक राजनीतिक और सुरक्षा स्थितियों में जीवन को बचाने और बदलने के लिए काम किया है। चुनौतियों के बावजूद शांति रक्षक कई साझेदारों

0: प्राणों की आहुति दी।
1: बिल्कुल, यह दिवस उन लोगों की स्मृति को सम्मान देने के लिए ही मनाया जाता है मीनाक्षी, कि जो शांति के लिए काम करते आए। और इस वर्ष की थीम की अगर हम बात करें तो शांति में निवेश, इन्वेस्ट इन पीस, ये इस वर्ष की थीम है।
0: और इससे जुड़े लोग जो है ना, वो नीले रंग की कैप लगाते हैं, नीले रंग के हेलमेट पहनते हैं, एक उनकी पहचान होती है। और ज़्यादातर उनके पास उनके वाहनों पर, कपड़ों पर एक जो फ्लैग टाइप लगा होता है, उस पर UN कैपिटल लेटर्स में बड़ा बड़ा लिखा होता है। और एक और ख़ास दिन आज है संतोष, वो है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, हमारे डाइजेशन के लिए खास जो है, क्योंकि पाचन तंत्र हमारे शरीर का बहुत ही जटिल हिस्सा होता है, भोजन को ऊर्जा में बदलता है, शरीर के लगभग 2/3 रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रित करता है।
1: बिल्कुल, खाना मात्र ही काफ़ी नहीं होता, भोजन का अच्छे से पाचन भी हो, अवशोषण भी हो और शरीर से निष्कासन भी हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैटर करती हैं मीनाक्षी। पाचन संबंधी रोगों और विकारों की रोकथाम, प्रसार, निदान व प्रबंधन और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है क्रॉनिक डायरिया, लक्षणों को न करें अंदाज
0: अनदेखा। और बिल्कुल, स्वस्थ पाचन के लिए हमें अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में फाइबर, फल, सब्जियां, साबुत अनाज शामिल करने चाहिए और दिन भर में भरपूर पानी पीना चाहिए ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे और पाचन क्रिया सुचारू रूप से चले।
1: ये क्रोनिक डायरिया जो दीर्घकालिक दस्त की जो बात हो रही है ना, इसमें 4 सप्ताह से अधिक समय तक अगर लगातार पतले या पानी जैसे मल त्याग हो रहा हो, यानी दस्त हो रहे हैं, तो इसको क्रोनिक डायरिया में माना जाता है। ये सारे लक्षण चेतावनी देने वाले संकेत हमें करते हैं।
0: और संतोष देखो, इनमें ना अपने हमें बच्चों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों में अच्छा पोषण और उनके ऊर्जा और पोषक तत्व क्योंकि प्रदान होते हैं, खाना जैसा खाएंगे उनको आवश्यकता भी होती है ताकि वो ठीक से बढ़ें, विकसित हों और उनका वजन जो है वो स्वस्थ रहे, क्योंकि वजन भी मैटर करता है एज के साथ साथ।
1: बिल्कुल, दस्त होने पर वजन सबसे जल्दी तेजी से कम होने लगता है। जब भी आपको संदेह होने लगे तो अंतर्निहित स्थितियां जो होती हैं, हमारी बॉडी किसी भी बीमारी के प्रति रिएक्ट करती है, तो हमें तुरंत शरीर के अलग से होने वाले प्रभाव को जानने, समझने और ध्यान देने की जरूरत बन पड़ती है।
0: बिल्कुल, और साथ ही आज दिवस है अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस। ये विशेष दिन न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेन सिंह नॉर्गे को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने 1953 में इसी दिन पहली बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर की है, उस पर सफलतापूर्वक कदम रखा। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में नेपाल सरकार ने साल 2008 में हर वर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था।
1: और इस दिवस को कैसे मनाया जाता है इसकी हम बात करें तो काठमांडू में तेनजिंग हिलेरी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम होते हैं, एवरेस्ट अभियानों की परेड प्रदर्शनियां होती हैं, फोटो प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं और प्रसिद्ध पर्वतारोहियों और शेरपा समुदाय के नेताओं के भाषण ये सब आयोजित करवाए जाते हैं।
0: संतोष, तुम्हें पता है कि जो जिन लोगों को इन ऊंचाइयों से प्यार होता है ना, वो कितने भी कैसा भी वहाँ का वातावरण खराब होता है, ठंड होती है, गलाने वाली ठंड होती है, तो भी वो कभी हिम्मत नहीं हारते। और ऐसा ही कुछ जो चमत्कार कर दिखाया उदयपुर की मनस्वी अग्रवाल ने, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर देश का, राजस्थान का और अपने शहर का, परिवार का नाम उन्होंने विश्व पटल पर चमकाया। और सामान्य नागरिक श्रेणी की राजस्थान की वो पहली महिला एवरेस्ट फतह करने वाली बन गईं। उनकी सफलता युवाओं में, खासकर बेटियों के हौसले और सपनों को के लिए नई मिसाल बनी है। और तुम्हें पता है जो उनका दल गया था ना, 8 सदस्यों का दल था, लेकिन असाध्य परिस्थितियां थी, खराब मौसम था, तेज बर्फीली हवाएं थी, जो तापमान था -45 से -50, तो उनके 2 साथी काल का ग्रास भी बन गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कदम नहीं रोके और रच दिया इतिहास।
1: बिल्कुल, मनस्वी अग्रवाल का यह कहना था मीनाक्षी कि एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ने के लिए केवल शारीरिक ताकत ही नहीं, मानसिक मजबूती भी ज्यादा काम आती है।

0: बिल्कुल, और इस धुन को अब कुछ दिन और सुनेंगे हमारे श्रोता, क्योंकि आईपीएल 19 अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। टूर्नामेंट अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। फाइनल में जगह बनाने के लिए जंग तेज हो चुकी है। क्वालिफायर वन में जीतकर आरसीबी ने फाइनल में प्रवेश तो कर ही लिया है, और कल जो है टीमों के लिए आराम का दिन रहा।
1: बिल्कुल, राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के क्वालिफायर टू में जगह बना ली है, और आज शाम 7:30 पर न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ में मैच खेला जाएगा, जिसमें राजस्थान रॉयल्स और गुजरात फाइनल में पहुंचने के लिए मुकाबला करने वाली हैं।

0: और देखो हमारे उदयपुर में क्या क्या चल रहा है संतोष, ये भी श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिए उदयपुर ज़िले में आज से 50वां विटामिन ए अभियान शुरू हो रहा है, जो 29 जून तक चलेगा। इस अभियान में ज़िले के स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर 9 से 12 माह तक के बच्चों को 1 ml और 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 2 ml विटामिन ए की खुराक दी जाएगी।
1: बिल्कुल, आंखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए चूके ना और विटामिन ए का घोल जरूर से पिलाएं। वैसे मीनाक्षी, पुरुषोत्तम मास के चलते शहर के वैष्णव मंदिरों में विशेष मनोरथों का और भागवत कथाओं का दौर जारी है। विशेष मनोरथों की कड़ी में गुरुवार को जगदीश मंदिर में भव्य अंगूर बंगला झांकी सजाई गई। कहीं पर आम की, कहीं लीची से, ऐसे विभिन्न मोगरे की कलियों से बंगले सजाए जाते हैं।

0: हैं। अधिक मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूरे माह में विशेष सेवा, पूजन और झांकियां सजाई जाती हैं।
1: बिल्कुल, कल ईद उल अजहा का त्यौहार भी समुदाय ने अच्छे से मनाया और पूरे देश में अमन चैन खुशहाली की कामना की।
0: बिल्कुल, शहर के प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में हजारों लोगों ने नमाज अदा करके शहर में, मुल्क में अमन, खुशहाली, तरक्की की दुआएं मांगी और गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। त्यौहार को लेकर शहर के बाजारों में देर रात तक रौनक बनी रही और शहर के कई सामाजिक संगठनों ने जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री और मिठाइयाँ वितरित की।
1: बिल्कुल, कितना अच्छा लगता है ना ऐसे। और देखो, आज पुण्यतिथि है भारत के किसान नेता, जो किसानों के मसीहा कहे जाते थे, भारत रत्न से सुशोभित पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की। दो बार उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री चुने गए। कृषि मंत्री के रूप में भी कार्य करते हुए उन्होंने जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया और गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के सम्मानित पदों पर भी वे विराजित रहे।
0: बिल्कुल, परिवार में शैक्षणिक वातावरण में पले बड़े चौधरी चरण सिंह के पिता की, यानी चौधरी मीर सिंह जी की, प्रबल इच्छा थी कि उनका जो पुत्र है वो जनता का कुशलतापूर्वक प्रतिनिधित्व करे और सेवा करे देश की।
1: ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को भारत की प्रगति की रीढ़ मानते थे वे, और भारत वर्ष में उनकी जो जन्म जयंती है उसको राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 दिसंबर को। स्वयं का बचपन खेती की धूल मिट्टी फसलों के बीच गुजरा, क्योंकि कृषि परिवार में उनका जन्म हुआ था, इसीलिए ग्रामीण समाज के दर्द को बखूबी जानते थे, महसूस करते थे। BSc की, MA की और फिर LLB की डिग्री प्राप्त की। गांधी जी और सरदार पटेल के विचारों से प्रभावित हुए और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। स्वाधीनता की खातिर जेल भी गए, पर हौसला कभी नहीं डगमगाया।
0: कृषकों के कल्याण के लिए बहुत कार्य उन्होंने किया और अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा के लिए समर्पित रखा। वो किसानों के नेता माने जाते रहे। उनके द्वारा तैयार किया गया जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। प्रतिभाशाली व्यवहारवादी श्री चरण सिंह चौधरी अपनी वाक्पटुता और दृढ़ विश्वास के लिए जाने जाते हैं,
1: और दिल्ली में यमुना तट पर किसान घाट नाम से उनकी स्मृति में समाधि स्थल भी बनाया गया।

0: हरी भरी खेती की राम करे रखवाली। राम तो हरी भरी खेती की रखवाली करेंगे, पर हमारे शरीर की रखवाली तो हमें ही करनी होगी, क्या
1: और
0: कहते हो?
1: बिल्कुल संतोष। और इस गीत में देखो ये ना बात भी ऐसी ही की गई कि जो खेत है वो धूप से जल रहे हैं और बादलों को इनवाइट किया जा रहा है कि अब कब आओगे, कब बरसोगे, लेकिन अभी समय है। फिलहाल देखो आपने कल नोटिस किया होगा थोड़ा शाम से हवा चलने लगी थी, लेकिन गर्मी जो है वो तो अपना प्रचंड रूप दिखा ही रही है। जो गिरावट थोड़ी तापमान में हुई भी है लेकिन वो इतनी कारगर नहीं सिद्ध हुई है। तो ये जो चल रहा है नौ तपा का दिन, यानी कि नौ दिन जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और भीषण गर्मी पड़ती है।
0: बिल्कुल, अलग अलग क्षेत्रों में इतनी मतलब कि तेज और प्रचंड गर्मी पड़ती है कि सामान्य जीवन जीना भी हमें थोड़ा दुष्कर सा लगता है।
1: तो ऐसे में आधुनिक समय में जब हमारा ज्यादातर वक्त एसी, कूलर और बंद कमरों में बीतता है, तब हमें अपनी दिनचर्या और खानपान में खास बदलाव करने की जरूरत होती है ताकि शरीर का तापमान संतुलित रहे और हम हीट स्ट्रोक से अपने आप को बचा सकें।
0: बिल्कुल, खानपान में बदलाव तो निश्चित ही हमारे श्रोताओं ने किया ही होगा कि गर्मी के हिसाब से वो अपने आहार विहार को व्यवस्थित कर रहे होंगे। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं, जैसे दोपहर में आप 10 बजे से 4 बजे तक धूप जाने से बचे रहें, अगर जाना भी पड़े तो कैप, सनग्लास, सनस्क्रीन लगाकर बाहर निकलें और लिक्विड डाइट पर जोर रखें कि ताकि शरीर में आपके पानी की पर्याप्त मात्रा बनी रहे।
1: बिल्कुल, जो तरल पदार्थ है उनमें नींबू पानी, नारियल का पानी, छाछ, मट्ठा जिसे कहते हैं, पुदीने का रस और ORS ये भी पीते रहना चाहिए, इससे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं होगी। मौसमी फल सब्जियां हैं जैसे अभी तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, ऐसे फलों को का सेवन करते रहना चाहिए।
0: अगर एक एक पदार्थ की हम बात करें जिनका नाम आपने लिया, तो पुदीने के पानी से अपच में भी ये लाभकारी होता है, वैसे ही बेल का शरबत पेट में ठंडक पहुंचाता है, आम का पन्ना लू से बचाता है और तरबूज तो पानी की कमी दूर करता ही है, नींबू पानी से विटामिन सी भी भरपूर हमें मिल पाता है और सत्तू का अगर सेवन करें तो एनर्जी और हाइड्रेशन और ठंडक हमें भरपूर देने में सत्तू अपनी एक अच्छी भूमिका निभाता है। छाछ हमें दोपहर के भोजन में लेनी है जिससे कि पाचन क्रिया में वो सहायक रहे, और नारियल पानी शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखता है, और सादा पानी तो बार बार पीते रहें, प्यास लगने का इंतजार
1: नहीं करें, और चाय, कॉफी, पैक जूस, कोल्ड ड्रिंक्स इनसे बचें, और ज्यादा तीखा, तला, भुना मसाला और बासी खाना खाने से भी बचें। देखो ना नौतपा में ना नींद भी बहुत जरूरी होती है संतोष, क्योंकि क्या होता है कि भारी गर्मी और उमस के कारण रात में पसीना आता है जिससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, बार बार रात को प्यास लगती है, बेचैनी रहती है, नींद टूटती है, और दिन भर की जो झुलसाने वाली गर्मी होती है ना वो मानसिक रूप से थका भी देती है, एक चिड़चिड़ापन सा हमारे व्यवहार में महसूस हम करते हैं जिससे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, और लेटने के बाद भी आप ये ऑब्जर्व करोगे कि दिमाग शांत नहीं रहता।
0: बिल्कुल, इतना सब ध्यान रखते रखते भी अगर आपको डिहाइड्रेशन के लक्षण लगे जैसे चक्कर आना, कमजोरी होना, सूखा मुंह होना, तो उसको नज़रअंदाज ना करें और तुरंत से चेतन हो जाएं कि अब हमें क्या करना है। और जब आप एसी और कूलर का यूज़ करते हैं और आपको उससे एलर्जी होती है तो क्या कुछ हमें करना चाहिए?
1: बिल्कुल, और नींद अच्छी लें उसके लिए भी ज़रूरी है कि कमरे में वेंटिलेशन प्रॉपर हो, सोते समय भी बाहर निकलें तब भी ढीले ढाले और सूती कपड़े पहने, सोते समय भी ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, और शरीर का जो तापमान है उसको ठीक रखें। आप चाहें तो हल्का गुनगुना और सामान्य पानी से एक बार शावर भी ले सकते हैं सोने से पहले।
0: एसी से डायरेक्ट बाहर नहीं जाएं, पहले रूम टेम्परेचर पर खुद को लाएं और बाद

0: में ही आप बाहर जाएं, बगैर पानी के कूलर को थोड़ी देर चलाएं, जिससे ह्यूमिडिटी जो होती है वो दूर होती है।
1: तो ज़्यादा थके नहीं, अपने दिमाग को भी ठंडा रखने की कोशिश करें और स्वयं को भी, और सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम।

हमारे श्रोता सुन रहे हैं गीतकार योगेश का लिखा गीत उनकी पुण्यतिथि पर, और अब समय हो चला है हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 4 जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और दूसरे कारणों से होने वाले आबादी बदलाव की जांच के लिए बनाई गई समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारण

0: और इसायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: श्री शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि अहमदाबाद साल 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। वहीं 2036 के ओलंपिक के लिए आधिकारिक बोली भी पेश की जा चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान महिलाओं के नाम पर और संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 93 खनन लीज रद्द करने के मामले में राज्य सरकार को एसएलपी पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जनवरी 2026 में भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर और अजमेर जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अब जुलाई के 3rd सप्ताह में रखी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खनन लीज और एलओआई धारकों को खनन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए बजट घोषणा की क्रियान्विति में 676 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी इस मंजूरी के तहत 686 किलोमीटर से अधिक लंबाई सड़कों का निर्माण और विकास कार्य किया जाएगा। इसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, नागौर और पाली सहित 33 से अधिक जिले लाभान्वित होंगे। इन जिलों में 77 सड़कों का निर्माण और मरम्मत का काम किया जाएगा। इससे दूरदराज के गांवों तक भी बेहतर संपर्क सुविधा मिल सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News Rajasthan पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के उपयोग में कमी लाने के लिए अब ई वाहन खरीदेगी। प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री और पाली जिला प्रभारी झावर सिंह खर्रा ने कल मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ईंधन बचत के लिए ये पहल की जा रही है।
3: एक सप्ताह में अगर ये परिस्थितियां सामान्य हो जाए, पेट्रोल कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की उत्पादन बढ़े, आपूर्ति बढ़े, बाजार में कीमतों में कमी आएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर भारत में भी पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में निश्चित रूप से कमी होगी। राज्य सरकार ने भी अब यह तय कर लिया है कि आज के बाद किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी वाहन की खरीद होगी तो वो ईवी वाहन ही खरीदेंगे ताकि पेट्रोल डीजल की कीमत को न्यूनतम से न्यूनतम किया।
1: राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने जयपुर के बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के पहले कुलगुरु और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किए गए हैं। उन पर नियुक्तियों में भारी गड़बड़ियां करने और विश्वविद्यालय नियमों को दरकिनार करने का आरोप था। मशहूर शायर बशीर बद्र को कल

0: भोपाल में सुपुर्द खाक किया गया। लंबी बीमारी के बाद 91 वर्ष की उम्र में कल भोपाल में उनका निधन हो गया था। डॉक्टर बद्र की शायरी ने जिंदगी और तमाम एहसासात के कई रंग देखने को मिलते हैं। उनकी गजलों ने देश दुनिया में लोगों के दिलों को छुआ। उर्दू गजल को आम आदमी तक पहुंचाने और मकबूल करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
1: धूप के पार सितारों का नगर लगता है, उस पहाड़ी पे मुझे चांद का घर लगता है। चांद मेहराब पे सोई हुई ये कायत है, बेवजू आंखें हैं पड़ते हुए डर लगता है।
0: प्रदेश में प्रचंड गर्मी और तेज धूप तथा गर्म हवाओं से लोग बेहाल हो रहे हैं। प्रदेश के 6 शहरों में कल पारा 46 डिग्री से ऊपर मापा गया, वहीं 11 स्थानों पर 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। 47.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। करौली, दौसा, चूरू, जयपुर, श्रीगंगानगर और बीकानेर सहित कई स्थानों पर रातें भी काफी गर्म रही। राजधानी जयपुर में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई और पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री रहा, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अलवर में देर रात कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, वहीं कहीं कहीं ओले भी गिरे। झुंझुनू और हनुमानगढ़ में कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। भरतपुर में भी तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश से होने से राहत मिली है। हालांकि कई स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली के पोल भी धराशायी हुए। धौलपुर में कल देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर अब तक रुक रुक कर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तापमान में काफी गिरावट आई है और मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अंधड़ के साथ हल्की बरसात होने के आसार जताए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से सामना करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के 4 जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.9 MHz पर और मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 KHz पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। समय हो गया है 9:10। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन के प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर में।
3: और एक बार फिर मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी।
2: और मैं हूं संतोष।
3: और देखो, हम फिल्मी फ्राइडे की भी बात करेंगे संतोष आज के कार्यक्रम में, क्योंकि शुक्रवार का दिन है। तो आज इस शुक्रवार थिएटर्स में छोटे और मध्यम बजट की कई हिंदी फिल्में एक साथ दस्तक दे रही हैं, जिनमें फैंटेसी से लेकर सस्पेंस थ्रिलर शामिल है। द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो, एलियंस का आगमन, जैकी श्रॉफ, प्रतीक बब्बर, भाग्यश्री कॉमेडी के स्टारर, ये जो है फिल्म है कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म है और एक दादा और उनके पोते के बीच के प्यारे रिश्ते की कहानी है, जहां बच्चा मानता है कि उसके दादा के पास सुपर पावर्स हैं, वो दुनिया को एलियन से बचाएंगे। कृष्णा और चिट्ठी, ये भी दर्शील सफारी, अरुण गोविल, मीर सरवर की फिल्म आ रही है। और कृष्ण भक्त पंडित, उनके 16 साल के बेटे जो कि सचिन तेंदुलकर के बड़े फैन हैं, उनकी कहानी पर ही आधारित है। बंदर, बॉबी देओल, सानिया मल्होत्रा और राज बी की ये फिल्म, ये भी रिलीज होने वाली है। डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप। और इसके अलावा जो फिल्म आ जा रही है वो जीना दिल से, कृति वर्मा की म्यूजिकल रोमांस ड्रामा फिल्म। आज के युवाओं और दोस्तों के एक ग्रुप की कहानी जो शादी की भागदौड़ और एक खोई हुई हार्ड ड्राइव को ढूंढने के लिए मजेदार रोड ट्रिप पर निकलते हैं। साथ ही एक और फिल्म आ रही है।

0: ओप्सीज, और ईशा सिंह और पीटर विल्सन इसमें नजर आएंगे। ओटीटी की बात करें तो मई के इस आखिरी वीकेंड पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी कुछ समय पहले सिनेमा घरों में आ चुकी फिल्मों के डिजिटल प्रीमियर और नई वेब सीरीज हमें देखने को मिलेंगी। कर्तव्य, जो सैफ अली खान की है, क्राइम थ्रिलर, और मई की शुरुआत में रिलीज हुई रितेश देशमुख की राजा शिवाजी, जुनैद खान, साई पल्लवी की एक दिन, ये भी इसी वीकेंड के आसपास ओटीटी पर आने वाली है।
1: बिल्कुल। और मीनाक्षी,
0: जो कारोबार रहा इन फिल्मों का पिछले हफ्ते रिलीज हुई,
1: हाँ बिल्कुल, वो बताते हैं हमारे श्रोताओं को। सिनेमाघरों में इस समय नई रिलीज और पुरानी फिल्मों के बीच दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। पिछले हफ्ते 22 मई 2026 को रिलीज हुई नई हिंदी फिल्म के साथ साथ उससे पिछले हफ्ते आई फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो चांद मेरा दिल, अनन्या पांडे और लक्ष्य लालवानी स्टारर यह रोमांटिक ड्रामा को मिक्स रिव्यूज मिला है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने की कोशिश कर रही है, इसने दुनिया भर में ठीक ठाक पकड़ बनाई है। फिल्म ने पहले वीकेंड पर 11 करोड़ बटोरे थे, सोमवार को 2.25 करोड़ और मंगलवार को 2.10 करोड़ का कलेक्शन रहा, जो यह दिखाता है कि वीकडेज में गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है। पति पत्नी और वो, इस फिल्म की जब हम बात करें तो आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान स्टारर यह सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में चल रही है और यह फिल्म चांद मेरा दिल को कड़ी टक्कर दे रही है। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 29 करोड़ कमाए थे, दूसरे वीकेंड पर फिल्म ने 7.35 करोड़ जोड़े और 12वें दिन मंगलवार को फिल्म ने 1.40 करोड़ का कलेक्शन किया और अब यह वर्ल्ड वाइड 55 करोड़ के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है।
0: बिल्कुल संतोष, और देखो हमारे श्रोताओं के संदेश भी शामिल करेंगे हम, क्योंकि आने शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले एक बार फिर से श्रोताओं को बता दें हम महिला मुद्दों पर केंद्रित फिल्मों की बात भी करेंगे, एक गीत पहले सुनवाएंगे। और 9462697568 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। आपकी पसंदीदा महिला सशक्तिकरण, महिलाओं पर केंद्रित फिल्म कौन सी है और आप हमसे अपनी वुमेन ओरिएंटेड फिल्मों के बारे में बातें साझा कर सकते हैं।

0: तो देखो, ये हमारे श्रोताओं के संदेश आ रहे हैं। पहले तो जो हमने कार्यक्रम में पहले बातें की उस पर जो हमारे श्रोता हैं वो कहते हैं ये धारावती जतिन सुहालका हितेश विष्णु जी चौधरी चरण सिंह जी को वो याद कर रहे हैं। ये हमारे नियमित श्रोता हैं। गानों का चुनाव इन्हें ठीक लग रहा है। एवरेस्ट दिवस नौतपा में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जो पेय पदार्थों की जानकारी है वो भी इन्हें पसंद आई। इसके साथ ही ये परमानंद जी कुमावत इनके साथ इन्हें फिल्मों से जो जानकारी मिली अच्छी लगी है। मूवी मसाला फ्राइडे है और नरोत्तम जी भी इनके साथ में है। बशीर बद्र साहब के निधन पर दुख भी जता रहे हैं रेडियो श्रोता संघ के सदस्य उदयलाल चेलर, कवि श्याम मचपाल, ज्योति पुंज और ये हैं हमारे श्रोता। इसके अलावा जो दिवस था शांति के लिए उसको भी इन्होंने पसंद किया है। नीले कपड़े वस्त्र टोपी पहनने की जो बात हमने की उसका भी इन्होंने जिक्र किया है अपने संदेश में।
1: बिल्कुल, हमारी एक और श्रोता हैं जो हमें सजीव रूप से सुन रही हैं। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया लिखते हुए हमें लिखा है कि हमारे उदयपुर की तो बात ही निराली है। जो हमारे अधिक मास में मंदिरों में आयोजन हो रहे हैं, कथा भागवत का जो प्रसंग चल रहा है वो सभी अपडेट जानकर हर्षित हैं। वहीं विटामिन ए के गोल की जो हमने जानकारी दी वो उन्हें अच्छी लगी है। नौतपा की जानकारी के विषय में ये कह रही हैं कि हम पानी पीते रहते हैं और हम भी पानी पीने का बराबर ध्यान रखते हैं। नींबू पानी, बेल शरबत, पुदीना पानी और छाछ, दही, मट्ठा, इन सभी का सेवन हम कर रहे हैं और आपने हमने जो जानकारी यहाँ से उन्हें दी है वो उनके लिए उपयोगी है, ऐसा उनका कहना है।
0: तो देखो संतोष, अभी जो महिला ओरिएंटेड फिल्में हैं उनका जिक्र हमारा बाकी है और श्रोताओं से भी एक बार फिर से यही कहेंगे कि जो हमें व्हाट्सएप मैसेज अब करें तो वो महिलाओं पर केंद्रित फिल्मों के बारे में करें। तो नंबर 9462697568। एक और गीत सुनवाते हैं फिर जिक्र करेंगे
1: बिल्कुल
0: फिल्मों का।

0: संतोष, हिंदी सिनेमा में महिलाओं के किरदारों की बात करें ना, तो सच्ची भारतीय नारी त्याग सहनशीलता की मूर्त से बदलकर जो आज के युग में एक आत्मनिर्भर, मजबूत और अपने हक के लिए लड़ने वाली आधुनिक महिला का हो गया है। और ये जो बदलाव है ये रातों रात नहीं आया, बल्कि दशकों के सफर का नतीजा है। शुरुआती दौर में जहां महिलाएं अक्सर मुख्य नायक के सहारे चलती थी, वहीं कुछ ऐसी फिल्में भी आई जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा।
1: बिल्कुल, हिंदी सिनेमा हमारे समाज का आईना रही है मीनाक्षी। समय के साथ महिलाएं सजावटी किरदार से आगे बढ़कर मजबूत, आत्मनिर्भर और अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली महिलाओं का किरदार भी निभा रही हैं। महिलाओं के संघर्ष, साहस और सफलता की कहानियों को बड़े पर्दे पर जीवंत किया है फिल्मी सिनेमा ने।
0: देखो, कहीं तो ना बायोपिक फिल्में भी ऐसी महिलाओं के ऊपर बनी भी हैं, है ना। मदर इंडिया की बात करें तो नरगिस द्वारा निभाया गया राधा का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे मजबूत महिला किरदारों में गिना जाता है। गरीबी और समाज से लड़ती है और अपने उसूलों से लेकिन कभी समझौता नहीं करती। बंदिनी, सुजाता, विमल रॉय की इन फिल्मों ने महिलाओं के आंतरिक संघर्ष, उनके आत्मसम्मान और सामाजिक भेदभाव को बहुत गहराई से दिखाया। 70 और 80 के दशक में महिलाएं अक्सर सिर्फ गानों या नायक के प्रेरणा के रूप में सिमट गई थी, लेकिन इस कमर्शियल दौर में भी भूमिका, अर्थ जैसी पैरेलल सिनेमा की फिल्मों ने एक महिला की अपनी पहचान और वैवाहिक जीवन से अलग उसकी आजादी की वकालत की थी। 2000 के दशक में भी हिंदी सिनेमा ने एक बड़ा बदलाव आया और कुछ ऐसी आधुनिक फिल्मों को देखा गया जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की परिभाषा को एक नए सिरे से गढ़ा। और आज की फिल्मों की सबसे अच्छी बात यही है कि अब महिलाओं को परफेक्ट नहीं दिखाया जाता, ग्रे शेड्स में भी नजर आती हैं, और यही उनकी जो रियलिटी है वो दर्शकों को पसंद आती है। जैसे कि हमने गाना सुनवाया टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म का, तो ये जो फिल्म है ये केवल शौचालय बनवाने की कहानी नहीं है, बल्कि महिलाओं की गरिमा, बुनियादी हक की लड़ाई को दिखाती है। खुले में शौच एक सामाजिक अभिशाप है। घर में आलीशान चीजें होना बेकार है अगर महिलाओं को बुनियादी जरूरत के लिए भोर में खेतों की तरफ भागना पड़े। ये केवल स्वच्छता का नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान का मुद्दा भी है।
1: बिल्कुल, हमारी एक श्रोता हमें श्रोता संवाद के सेक्शन में बता रही हैं अपने विचार कि सभी तरह की फिल्मों में मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी मूवी की जो शूटिंग हुई है वो इन्हें प्रभावित करती है। खून भरी मांग, रेखा अभिनीत जो फिल्म है उसमें इनको रेखा का जो रोल है वो बहुत पसंद आया है। और इसी कड़ी में हम कहना चाहें मीनाक्षी, तो महिला सशक्तिकरण की प्रभावशाली कहानी है मिर्च मसाला फिल्म। महिलाओं का अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की अनूठी मिसाल पेश करती है मिर्च मसाला फिल्म, जिसमें साधारण गांव की महिला शक्तिशाली अधिकारी की बुरी नज़र से बचने के लिए ना कहने का विकल्प चुनती हैं। यानी हमें समय पर ना कहना भी आना चाहिए।
0: बिल्कुल, और जो पैडमैन फिल्म रही ऐसी प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया मासिक धर्म पीरियड्स के बारे में, इससे जुड़े सामाजिक संकोच और अंधविश्वासों को तोड़ती है। मासिक धर्म कोई शर्म या बीमारी नहीं। फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पीरियड्स कोई अपवित्र या शर्मनाक बात नहीं है। इसके दौरान गंदे कपड़ों का, राख का इस्तेमाल महिलाओं को जानलेवा बीमारियों की तरफ धकेलता है। और फिल्म पुरुषों को भी यह समझाने की प्रेरणा देता है कि अपनी पत्नी, माँ, बहन के स्वास्थ्य की रक्षा करना उनकी भी जिम्मेदारी है। एक अभी वेब सीरीज भी आई थी, संतोष तुमने देखी हो कभी, चिरैया। ये सीरीज उस गंभीर विषय को उठाती है जिसे हमारे समाज में अक्सर पारिवारिक मामला कहकर दबा दिया जाता है, मैरिटल रेप। चिरैया बहुत ही मजबूती

0: से ये संदेश देती है कि शादी के साथ फेरे लेने का मतलब ये नहीं कि पति को अपनी पत्नी की इच्छा के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार मिल गया है। सहमति यानी कंसेंट शादी के बाद भी उतना ही जरूरी है जितना कि पहले।
1: हमारी महिला श्रोता हमें मैसेज के माध्यम से लिख रही हैं कि उन्हें लज्जा फिल्म भी बहुत आकर्षित लगती है और फूलन देवी के जीवन पर आधारित बैंडिट क्वीन भी उनकी पसंदीदा मूवी में से एक है।
0: इनके श्रोताओं के नाम भी बताओ।
1: हाँ, इनका नाम है किरण कुमावत।
0: और इससे पहले जो तुमने संदेश पढ़ा था वो कौशल्या और रेखा सुहाल का और डिम्पी सुहाल का ने भेजा था।
1: बिल्कुल।

भाग जॉनी फिल्म के इस गीत के साथ ही मीनाक्षी अब हम इस प्रोग्राम से इजाजत लेना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं उन श्रोताओं का जो हमारे साथ श्रोता संवाद में जुड़े रहे, और आप सभी हमें दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से जिसका नाम है नमस्कार उदयपुर।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग, जिला शिमला,

0: अचल प्रदेश से सूरज चौहान,
1: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
0: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
1: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
0: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
1: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
0: जी, ये बात तो है।
1: श्रोताओ, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: जी हाँ, और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
1: जी,
0: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, वे खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
1: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
0: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
1: जी,
0: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
1: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
0: काले गुलाब?
1: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
0: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
1: जी,
0: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
1: जी,
0: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
1: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
0: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
1: जी,
0: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
1: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
0: जी, वो तो है।
1: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
1: जी,
0: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
0: आइए बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का।
0: जी,
1: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
1: जी,
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी, तो श्रोताओ ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,

0: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,

0: गुट्टे आँख मिचौनी खेले,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेले,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता

0: वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन। गायन स्वर एंजल और वान्या। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र

0: चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
1: वेरी एम्बिशियस, लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
0: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
1: बेस्ट ऑफ लक। और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
2: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
1: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी,
2: हम तैयार हैं। लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्ट

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालुबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
1: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
0: आक्रमण हुआ
1: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।

0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
3: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
0: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार

0: आखिरकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
1: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और R.S. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी उदयपुर है।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं फिल्मी गीतों की सुरीली दुनिया में। शुरू करते हैं फिल्म संगीत का सफर, जिसमें सबसे पहले हम सुनेंगे मोहब्बत फिल्म का गाना, जिसे बप्पी लहरी ने म्यूजिक कंपोजिंग की है और मधुर आवाज किशोर कुमार और साथियों की है।

बाहर आने तक। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास के गायक स्वर में। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर से। आइए अब प्रेम रोग फिल्म का गाना सुनते हैं जिसे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने गाया है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले,
1: तेरी समझदारी का फल।

0: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

आकाशवाणी उदयपुर से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों के साथ। इस गीत की फिल्म का नाम है राजा।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में फिजा फिल्म का गाना, जिसे गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने।

0: उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ में गर्व फिल्म का गीत अभी आपने सुना। फिल्म संगीत कार्यक्रम आपके लिए यूं ही जारी रहेगा इस संदेश के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
2: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

फिल्म संगीत कार्यक्रम के अंत में हम सुनते हैं दयावान फिल्म का गीत, जिसे पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल ने गाया है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। आप सुनिए यह गीत और दीजिए अनुमति संतोष को। नमस्कार।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 11 बज चुके हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारे राजस्थान की मिट्टी की महक में रची बसी राजस्थानी गीतों से सजा हुआ कार्यक्रम गोखड़ा।

आकाशवाणी उदयपुर आप सुन रहे हो कार्यक्रम गोखड़ा। उम्मीद करूं आपने यो भजन बढ़िया लगे होगा। तो अबे आप सुनो यो दूसरो भजन।

0: नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
4: को आवेदन
5: है। दीप, तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
6: दिमाग चार्ज कर अपना।
7: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
6: देखा
5: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
7: अब क्या करोगे?
5: फ्री वाईफाई है ना।
6: बुद्धू सुधर जा।
7: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
5: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
7: RBI कहता है
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी उदयपुर आप हुण रिया हो कार्यक्रम गोखड़ा। आपने हुणवाऊ एक अच्छो सो कृष्ण भजन। तो आओ हुणो सा यो भजन।

0: दादी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
4: तीनों कॉलेज में
5: डोंट वरी,
4: फीस तो देखो।
6: क्या हाल है, क्या हुआ?
5: फीस की टेंशन,
6: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
7: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
6: वो कहा है?
7: मिठाई।
8: RBI कहता है
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं

0: के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहा है? मिठाई।
1: आरबीआई कहता है
2: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
3: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगली गजल मेहदी हसन की आवाज में।

अभी आपने सुना चंदन दास की आवाज में ये गजल। इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। श्रोताओं, शुभ दोपहरिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ हैं। तो आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आपको सुनवाते हैं प्रेम गीत फिल्म का ये गाना। इसे गाया है सुरेश वाडकर ने। तो आइए सुनते हैं आप और हम।

श्रोताओं, यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गाना। फिल्म है सपने साजन की और इसे गाया है अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल ने। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला गाना अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में। फिल्म है तुमको ना भूल पाएंगे।

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: श्रोताओं अभी आपने सुना ये संदेश और अब आइए आपको सुनवाते हैं गीत फिल्म का ये गाना। इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गाना आशा भोसले की आवाज़ में, और फिल्म है पत्थर दिल।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
2: श्रोताओं, यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। दिन के 12:47 हो चुके हैं। आइए आपको सुनवाते हैं ये गाना संगीत फिल्म से, और इसे गाया है अनुराधा पौडवाल ने। तो ये गाना पहुंचाते हैं आप तक, सुनिए।

अभी आपने सुना सोर फिल्म का ये गाना। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से, वहां से सुनेंगे हिंदी में समाचार, प्रादेशिक समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ, और अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में तेज अंधड़ और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच इस बदलाव से तापमान में गिरावट और लू का असर कम होने की संभावना है। विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 जून तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। इस बीच श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू तथा आसपास के इलाकों में कल बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं कोटा, पिलानी, जैसलमेर, अलवर, फलोदी, बीकानेर में गर्म हवाएं चली और हीट वेव का असर बना रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने परिंदों और पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
2: राजस्थान में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, नौतपा के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में आप सभी से सावधानी बरतने की एक अपील करता हूँ। यथासंभव तेज धूप में बाहर जाने से बचिए। ऐसी गर्मी में हमें बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भामाशाहों, दानदाताओं से अनुरोध है कि अपने गांव, मोहल्ले और बाजार में प्याऊ लगाएं। राहगीरों के लिए ठंडे पानी की और छांव की व्यवस्था कीजिए।
1: प्रदेश में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत अब तक करीब 19 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने बताया कि 24 मार्च से राज्य के 11,000 से ज्यादा अधिक जोखिम वाले गांवों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 5,000 आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनमें 16.5 लाख से अधिक एक्सरे और करीब 2.25 लाख से ज्यादा NAT की जांच की गई है। उन्होंने बताया कि सक्रिय केस गतिविधियों में कुल 32,000 नए टीबी रोगियों की पहचान की गई है। वहीं इस साल जनवरी से अब तक 38,000 रोगियों को पोषण किट वितरित किए गए हैं, साथ ही 2,000 नए निक्षय मित्र भी जोड़े गए हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रदेश भर में आज भी जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां हो रही है। इसी कड़ी में भरतपुर में जल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर जागरूकता कार्यशाला रखी गई है। वहीं जैसलमेर के रामदेवरा में राम सरोवर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को पारंपरिक जल स्रोतों को साफ रखने के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर वृक्ष पूजन कर कलश यात्रा भी निकाली गई। उधर बालोतरा में स्वच्छता के लिए श्रमदान किया गया। इसके तहत पुराने तालाबों, जोहड़ और बावड़ियों की साफ सफाई और मरम्मत की जा रही है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चौधरी चरण सिंह हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। बालोतरा में कल शाम हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना पचपदरा क्षेत्र के भांडियावास में हुई, जहां एक कार का टायर फटने से वह बेकाबू होकर पलट गई। इससे कार सवार 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

0: वहीं एक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उधर कोटा रेल मंडल के दराकी नाल में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर अंडरपास निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से रेलवे के दो इंजीनियरों की मृत्यु हो गई। उदयपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से दो श्रमिकों की मौत हो गई। पाली जिले में देर रात ट्रेलर की टक्कर से आरटीओ विभाग में कार्यरत गार्ड की मृत्यु हो गई। दुर्घटना जॉर्डन टोल प्लाजा के पास हुई, जहां वे आरटीओ टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अनेक स्थानों पर योगाभ्यास करवाया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर में भी आयुष विभाग और पतंजलि योग समिति की ओर से योगासन कार्यक्रम रखा गया। इसके जरिए लोगों को योग से होने वाले फायदों की जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं माताओं बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत।

0: हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। जी हाँ, इन्हीं खूबसूरत और जज्बाती पंक्तियों के साथ शुरुआत करते हैं सखियों के एक विशेष कार्यक्रम महिला जगत की। और मैं हूँ आपकी रेडियो सखी अजीता, और मेरे साथ हैं
1: डिम्पल शर्माली।
0: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो डिम्पल, आज हम जैसे भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी है, सब हम महिलाएं भी काम पे जाती हैं, तो आज हम हमारी सखियों से बात करेंगे कि महिलाएं अपने फिटनेस का कैसे ध्यान रखें और अपनी जीवन शैली में कैसे बदलाव करें।
1: बिल्कुल सही कहा, आज की जो भागा दौड़ वाली ज़िंदगी है उसमें महिलाएं कहीं ना कहीं अपने खुद पर ध्यान नहीं दे पाती है, जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और उनकी खुद की फिटनेस पर ध्यान अगर वो देगी तो वो दूसरों का भी ध्यान रख पाएगी और खुद भी स्वस्थ रहेगी।
0: क्योंकि डिम्पल, हम कहते हैं ना कि अगर महिलाएं अगर स्वस्थ रहेंगी तो परिवार का हर सदस्य जो है वह स्वस्थ रहेगा। सखियों, आज के समय में महिलाओं के लिए फिटनेस और एक संतुलित जीवन शैली सिर्फ शारीरिक रूप से अच्छा दिखने के लिए नहीं होती, बल्कि मानसिक मजबूती और हार्मोनल संतुलन और लंबी उम्र तक ऊर्जावान बने रहने के लिए भी बहुत ही बेहद ज़रूरी है। घर परिवार या फिर करियर की दोहरी तिहरी जिम्मेदारियों के बीच हम अक्सर महिलाएं अपनी सेहत को पीछे छोड़ देती हैं, जबकि सच यह है कि जब हम खुद स्वस्थ रहेंगी तब हम पूरे परिवार और समाज को संभाल पाएंगी।
1: बिल्कुल सही कहा अजीता, सखियों अक्सर महिलाएं अपनी सेहत को सबसे आखिर में रखती है। सुबह से रात तक काम, परिवार की चिंता, बच्चों की जिम्मेदारी और इसी बीच अपनी फिटनेस कहीं खो जाती है। लेकिन सखियों, क्या आपको पता है कि फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने आप को स्लिम करें, है ना? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि अगर आप फिटनेस है रखती हैं तो इसका मतलब है शरीर में ऊर्जा का होना, मानसिक शांति होना, आत्मविश्वास बढ़ना और जीवन को खुलकर जीना।
0: तो डिम्पल, इसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारी सखियों के लिए कि वो एक संतुलित पोषण वाली डाइट लें, क्योंकि महिलाओं के शरीर की ज़रूरतें जो होती हैं पुरुषों से काफ़ी अलग होती हैं, खासकर उम्र के अलग अलग पड़ावों पे। जैसे जब हमारा मासिक धर्म स्टार्ट होता है, गर्भावस्था होती है या मेनोपॉज के टाइम पर, हर महिला की अपनी अलग अलग आवश्यकताएँ होती हैं। तो ऐसे समय में हम महिलाओं को अपने पोषण को, अपनी डाइट का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा, और दिन में 20 से 30 मिनट तक अपने शरीर के लिए आप ज़रूर निकालिए, हल्की वॉक कीजिए, योगा, स्ट्रेचिंग, डांस, ये सभी फिटनेस के बहुत अच्छे तरीके हैं।
0: और डिम्पल, आजकल जैसे हम देखते हैं कि महिलाओं में विटामिन डी की भी कमी पाई जाती है, क्योंकि हम धूप में कम बैठते हैं तो विटामिन डी की आजकल महिलाओं में कमी पाई जाती है। तो हड्डियों की मजबूती के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम कैल्शियम या विटामिन

0: डी से भरपूर डाइट लें, क्योंकि 30 की उम्र के बाद महिलाओं में बोन डेंसिटी वैसे ही कम होने लगती है। इसके लिए दूध, दही, पनीर, रागी या हरी पत्तेदार सब्जियां हम ले सकती हैं। हम महिलाएं ऐसी होती हैं कि हम खुद तो खाए नहीं, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों को हम जरूर देती हैं।
1: जरूर देते हैं, बिल्कुल सही कहा। और ज़्यादा तला भुना और जंक फूड नहीं खाएं। हाँ। हरी सब्जियां, फल, दालें ये सभी खाएं, पर्याप्त मात्रा में पानी लें और शरीर को, जो कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है।
0: और आप जैसे हम महिलाओं में खून की कमियाँ भी हो रही होती है, तो इसके लिए आयरन से भरपूर डाइट भी आप हरी सब्जियाँ खाकर पूरी कर सकती हैं। और मांसपेशियों को मजबूत रखने और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करने के लिए हम प्रोटीन से भरपूर डाइट जैसे दालें, पनीर हैं, सोयाबीन या अंडे को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे इस तरह की चीज़ें करें, तो आप मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हों शारीरिक के साथ साथ।
1: बिल्कुल सही कहा। और नींद में समझौता मत कीजिए, कम से कम 7-8 घंटे की नींद जो है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और अपनी नींद का समय निकालें और इतनी नींद जितनी आपको ज़रूरत है उतनी तो आप ज़रूर लें।
0: और साथ ही जैसे आजकल हम शारीरिक जीवन शैली की बात कर रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते, इतनी तनाव भरी ज़िंदगी है, लोगों की इतनी टेंशन रहती है, और हम महिलाओं के मल्टीटास्किंग के कारण मानसिक तनाव बहुत जल्दी बढ़ जाता है, क्योंकि हम बाहर के काम भी करती हैं, घर के काम भी करती हैं, तो इतनी मल्टीटास्किंग के कारण हम ज़्यादातर तनाव में रहती हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है सखियों कि आपके पास मी टाइम हो, यानी कि पूरे दिन में से आप खुद के लिए भी समय निकालें।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिटनेस सिर्फ शरीर का नहीं दिमाग की भी होती है। कभी किताब पढ़िए, संगीत सुनिए, फ्रेंड्स से बातें कीजिए, खुद को समय दीजिए।
0: क्योंकि सखियों फिटनेस का कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि रोज चुनी जाने वाली एक अच्छी आदत है। अपनी थाली में बदलाव और दिनचर्या में थोड़ा सा ठहराव लाकर आप एक बेहतरीन और ऊर्जावान जीवन जी सकती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा सखियों, याद रखिए खुद को समय देना स्वार्थ नहीं जरूरत है। और जब महिला स्वस्थ और खुश होती है तब घर में खुशियाँ और ऊर्जा बनी रहती है।
0: डिंपल, कुछ पंक्तियाँ मुझे भी याद आ रही हैं। है कंधों पर जिम्मेदारी पर खुद को भूल न जाना तुम, सारे घर की धड़कन हो तुम, अपनी अहमियत पहचानो तुम, योग की शक्ति संयम की राह जब तुम कदम बढ़ाओगी, तन महकेगा मन चमकेगा, हर घर हर मुश्किल को जीत जाओगी, तुम ही शक्ति तुम ही सृजन, तुम्हारी सेहत ही संसार है, स्वस्थ रहो मुस्कुराती रहो, इसी में जीवन का सार है।

0: डिंपल, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं कि अति महत्वाकांक्षा से कैसे वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। सखियों, यह आज के आधुनिक समाज का एक ऐसा कड़वा सच है जिस पर खुलकर बात करना बेहद ज़रूरी हो गया है। महत्वाकांक्षा होना, जीवन में आगे बढ़ना और सफलता की चाह रखना हर इंसान का हक है और यह बेहद सकारात्मक गुण भी है। लेकिन जब यह महत्वाकांक्षा अति का रूप ले लेती है तो इसकी सबसे पहली और बड़ी कीमत अक्सर वैवाहिक जीवन को चुकानी पड़ती है।
1: बिल्कुल सखियों, सखियों, सपने देखना गलत नहीं है, आगे बढ़ना गलत नहीं है, सफल होना भी गलत नहीं है।

0: है, लेकिन सफलता की दौड़ रिश्तों की भावनाओं को पीछे छोड़ दे तब वैवाहिक जीवन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लेकिन जब महत्वाकांक्षा रिश्तों से ऊपर आने लगे तब वैवाहिक जीवन में दूरी, तनाव और भावनात्मक खालीपन पैदा होने लगता है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो डिंपल। और जब करियर की ऊंचाइयां छूने की अंधी दौड़ शुरू होती है सखियों, तो रिश्तों की बुनियादी जरूरतें पीछे छूटने लगती हैं, जो हंसते खेलते वैवाहिक जीवन को अंदर ही अंदर खोखला करने लगती है। कई बार ऐसा होता है डिंपल कि हम अपने जैसे वैवाहिक रिश्ते की नींव जो होती है वो एक दूसरे के साथ बिताए वक्त पर टिकी हुई होती है, और जब पति या पत्नी में से कोई एक अति महत्वाकांक्षा के दौर में होता है तो उसका 24 घंटों का ध्यान सिर्फ अपने काम में ही लगा रहता है, और वो दिन भर अपना काम करता रहता है, उसके लिए परिवार के लिए कोई समय नहीं रहता। तो कई बार इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो भी वैवाहिक जीवन को कष्टपूर्ण बना देती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और जो आजकल का जो समय है वो कंपटीशन वाला जो समय है ना, प्रतिस्पर्धा भरा आधुनिक समाज है। आज हर व्यक्ति खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना चाहता है। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, सोशल स्टेटस, इन सब को पाने की होड़ लगातार बढ़ रही है। और पति पत्नी भी दोनों करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार ये चीज़ें जो है उनको समझ की कमी पैदा कर देती है, और समझ की कमी पैदा करने से उनके रिश्तों में खटास आ जाती है।
1: बिल्कुल सही। और कई बार डिंपल ऐसा होता है कि जब दोनों हस्बैंड वाइफ ही वर्किंग होते हैं तो घर जो होता है वो एक सिर्फ एक होटल बनकर रह जाता है, जहां आप सिर्फ सोने के लिए ही जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और आजकल सोशल मीडिया का प्रभाव भी बहुत देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया ने लोगों की सोच को बहुत प्रभावित कर दिया है। दूसरों की चमकदार ज़िंदगी देखकर लोग अपने जीवन का जो है वो तुलना करने लगते हैं। उनके पास क्या है, हमारे पास क्या है, हम पीछे क्यों हैं, ये वाली जो सोच है लगातार जो है व्यक्ति को अधिक पाने की दौड़ में धकेल रही है, और धीरे धीरे रिश्तों की जगह उपलब्धियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण
1: बिल्कुल सही कह
0: होती
1: रही
0: जा
1: हो।
0: रही है।
1: क्यों होता क्या है कि जब आप अपने साथी को समय नहीं देती तो धीरे धीरे उनके बीच शेयरिंग वाली चीज़ें भी खत्म होने लगती हैं। एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों पार्टनर एक दूसरे के सुख दुख, मानसिक स्थिति और भावनाओं से अनजान होने लगते हैं। जब भावनात्मक रूप से अपनी बात कहने के लिए जीवन साथी आपके पास उपलब्ध नहीं होता तो रिश्ते में अकेलापन घर कर जाता है।
0: बिल्कुल सही। और आर्थिक दबाव जो है वो भी कई बार रिश्तों में खटास पैदा कर देता है, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी बढ़ रही है, पहले से ज़्यादा ज़रूरतें हो गई है लोगों की, और इन ज़रूरतों ने लोगों के जीवन को ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अच्छी शिक्षा, बेहतर सुविधाएं, सुरक्षित भविष्य के लिए पति पत्नी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उनको, लेकिन जब पूरा ध्यान सिर्फ करियर और कमाई पर ही केंद्रित हो जाता है तो रिश्तों में बातचीत की जो जगह है, संवाद की जगह जो है वो कम होती चली जाती है।
1: और कई बार ऐसा होता है कि परिवार का कोई फंक्शन हो या जीवन साथी का जन्मदिन हो या बच्चों के लिए कोई जरूरी काम हो तो जो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है अक्सर इन्हें अपने काम के लिए आसानी से कुर्बान कर देता है। यह जो आपका व्यवहार होता है वो आपके पार्टनर के मन में यह भावना पैदा करता है कि मेरी या इस परिवार की उनकी ज़िंदगी में कोई अहमियत ही नहीं। अक्सर हम सोचते हैं, जो घरेलू महिलाएँ होती हैं अक्सर ये सोचती हैं उनके पतियों के पास अगर समय नहीं होता उनके लिए, कि वो यही सोचती हैं कि भाई उनकी जिंदगी में हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है।
0: बिल्कुल। और आत्मनिर्भरता जो है वो भी आजकल लोगों में ये हो गया है, महिलाओं में भी आत्मनिर्भरता की बात आती है, और उनको लगता है कि हमारी आत्मनिर्भरता हमारी व्यक्तिगत पहचान है। जब पर लेकिन होता क्या है कि महिलाएं और पुरुष दोनों अपनी अलग अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं,
1: बिल्कुल सही।
0: और उनका ये सकारात्मक बदलाव भी अच्छा भी है, लेकिन कई बार मैं की भावना इतनी मजबूत हो जाती है कि हम पीछे छूट जाता है, और यहीं से रिश्तों में अहंकार और टकराव की शुरुआत भी होने लगती है।
1: और जब सफलता की दौड़ में हम बहुत तेज हो जाते हैं तो अनजाने में ही सही वैवाहिक जीवन में प्रतिस्पर्धा या अहंकार जो है प्रवेश कर जाते हैं। यदि एक पार्टनर ज़्यादा सफल हो तो भी कई बार इस तरह की भावना, श्रेष्ठता की भावना जो है एक दूसरे के अंदर आ जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर कम महत्वाकांक्षी आपकी वाइफ होगी या घरेलू जिम्मेदारियां वो संभालती होगी तो उसके मन में हीन भावना या उसमें उपेक्षा का दर्द अपने आप ही आने लगता है।
0: बिल्कुल सही। कई बार बहुत सारी ऐसी बातें होती है हमारे जीवन में जिससे कि हमारे वैवाहिक जीवन पर बहुत सारी नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, तो इससे क्या होता है कई बार भावनात्मक दूरी जो होती है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, उनके आपसी संवाद नहीं हो पाते जिससे कि वो भावनात्मक रूप से अटैच नहीं होते, इवन दूर चले जाते हैं, उनके बीच में टेंशंस क्रिएट हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाते हैं। और परिवार के लिए जब आप अपने करियर में ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप बहुत वर्कोलिक हो गए हैं, और परिवार के लिए जब आप समय नहीं दे पाते हैं तो समय की कमी जो है आपकी वो भी एक वैवाहिक जीवन पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, और इस आपके करियर फोकस होने की वजह से आप में अकेलापन भी

0: आ जाता है,
1: क्योंकि घर, बच्चों या बुजुर्गों की जिम्मेदारी डिंपल एक साझा प्रयास होती है जो हस्बैंड वाइफ को मिलके ही करनी होती है। लेकिन जब एक पार्टनर पूरी तरह से महत्वाकांक्षा में डूबा हुआ हो और दूसरा घर का बोझ उठा रहा हो, तो उसमें शारीरिक और मानसिक रूप से वो बहुत ज्यादा थक जाता है, जिससे उसके मन में करवाट आना जो है स्वाभाविक ही है।
0: बिल्कुल सही बात है। और इन सभी समस्याओं से निजात पाने का एक ही तरीका है कि आप संवाद बनाए रखें, काम और परिवार में संतुलन बनाए रखें
1: और वर्क लाइफ बाउंड्री तय करें। मतलब ऑफिस का काम आप ऑफिस में ही छोड़ के आएं, और जब आप घर पे आएं तो पूरी तरह से अपने परिवार के साथ समय बिताएं, और सप्ताह के अंत में उन्हें बाहर घुमाने के लिए भी ले जाएं। और जैसे कि तुमने बताया कि संवाद को टूटना न दें, आपस में बातचीत करें ताकि गलतफहमियां ना हो, और जो भी आपकी जैसे प्रमोशन भी मिलता है तो परिवार के साथ आप जश्न मनाएं।
0: बिल्कुल, एक दूसरे के सपनों का सम्मान करें और डिजिटल दूरी बनाए रखें।
1: और कहते भी हैं कि जीवन की गाड़ी दो पहियों पर चलती है। यदि एक पहिया आपका करियर बहुत बड़ा हो जाए और दूसरा आपका पहिया रिश्ता छोटा रह जाए, तो गाड़ी का डगमगाना और पलटना तय है। सफलता उतनी ही अच्छी है जो अपनों के साथ साझा की जा सके।

0: डिंपल, तन्हाई से बाहर निकलते हैं और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सखियों हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि की, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। हर साल 29 मई को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। वे देश के एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के अधिकारों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया।
1: बिल्कुल, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ, जो कि अब हापुड़ जिले के नूरपुर गांव में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की और 1928 गाजियाबाद में वकालत शुरू की।
0: सखियों, इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया। जमींदारी उन्मूलन का उन्होंने काम किया। उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री के रूप में उन्होंने जमींदारी उन्मूलन विधेयक तैयार किया और उसे लागू करवाया, जिसने

0: बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक कौन होते हैं ये भी सखियों आपको
1: बिल्कुल
0: जान
1: जी
0: लेना चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति सैनिक अलग अलग देशों से आते हैं। इनका उद्देश्य होता है दुनिया में शांति स्थापित करना, हिंसा को रोकना और ज़रूरतमंद लोगों को सहायता करना। ये सैनिक केवल हथियार नहीं उठाते बल्कि उम्मीद, विश्वास और मानवता का संदेश लेकर चलते हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को उनकी विशेष नीली टोपी या नीले हेलमेट के कारण दुनिया भर में ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी सखियों जाना जाता है। ये सैनिक विभिन्न देशों की सेनाओं से आते हैं जो युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं। इसमें भारत का भी अभूतपूर्व योगदान है। सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में भारत भी इसमें विशेष स्थान रखता है। भारत दुनिया भर में शांति सैनिक भेजने वाले शीर्ष देशों में शामिल है। भारत ने अब तक दर्जनों मिशनों में अपनी सेना, पुलिस और विशेषज्ञ भेजे हैं।
0: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के योगदान को मान्यता मिलती है इस दिन को मनाने से। और 29 मई का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1948 में फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र के पहले शांति मिशन संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन ने अपना काम शुरू किया था।
1: संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले विश्व शांति की रक्षा करते हुए भारत के सबसे अधिक सैनिकों ने अपनी शहादत दी है। भारत ने ही वर्ष 2007 में लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र का पहला पूर्ण महिला पुलिस दस्ता भेजा था, जिसे वैश्विक स्तर पर काफी सराहा गया।
0: संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2026 को तीन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के रूप में भी घोषित किया है। पहला है रेंज भूमि और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष।
1: अच्छा।
0: इसका उद्देश्य घास के मैदानों और पशुपालक समुदायों के पारिस्थितिक एवं आर्थिक महत्व को उजागर करना।
1: इस दिन न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक गरिमामयी समारोह आयोजित किया जाता है। यहाँ उन शांति सैनिकों को मरणोपरांत डैग हैमरशॉल्ट मेडल से सम्मानित किया जाता है जिन्होंने बीते वर्ष शांति की राह में अपनी जान गंवाई है।
0: बिल्कुल। और दूसरा जो संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2026 को मैंने आपको बताया कि तीन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वर्षों के रूप में घोषित किया है, तो दूसरा वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के नाम से भी है। यह कृषि क्षेत्र में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया है। और तीसरा, सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर स्वयं सेवकों के कार्यों और सतत विकास लक्ष्यों में उनके योगदान को सम्मानित करना है।
1: भारत हमेशा से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। भारतीय सैनिकों ने कई देशों में शांति स्थापित करने में अपना योगदान दिया है। उनकी बहादुरी, अनुशासन और सेवा भावना की पूरी दुनिया सराहना करती है।
0: सखियों, शांति केवल युद्ध न होने का नाम नहीं है बल्कि ऐसा वातावरण है जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। संयुक्त राष्ट्र के ये सैनिक मानवता की इसी भावना को मजबूत करते हैं।
1: ये सैनिक अत्यंत कठिन और संवेदनशील परिस्थितियों में मानवता की रक्षा के लिए सखियों मुस्तैद रहते हैं। 29 मई का यह दिन वैश्विक शांति के लिए उनके इसी निस्वार्थ जज्बे को सलाम करने का अवसर है।

0: टिबल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप बात करते हैं सखियों के बिल्कुल फेवरेट काम काज की बातों की। भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जब शाम को या काम के बीच हल्की भूख लगती है सखियों, तो हमारा हाथ अक्सर चाय, बिस्किट, नमकीन या चिप्स की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आप अपना वज़न संतुलित रखना चाहती हैं, ऊर्जावान बने रहना चाहती हैं और अपने फिटनेस यात्रा को मज़ेदार बनाना चाहती हैं, तो चटपटे और स्वादिष्ट, पौष्टिक और झटपट बनने वाले स्नैक्स भी बना सकती हैं। जैसे कि भुने हुए चने या मखाना आप खा सकते हैं, उनको रोस्ट करके आप रख लें तो वो खा सकती हैं।
1: बिल्कुल। और स्प्राउट चाट,
0: हाँ स्प्राउट्स, जैसे आप मूंग है इनको आप भिगो के रख दें, उनकी आप चाट बना के सुबह उसके साथ में चने भी भिगो सकती हैं, तो इसके स्प्राउट चाट खा सकती हैं। मिक्स नट्स या सीड्स खा सकती हैं, नट्स को आप ऐसे रोस्ट करके रख लें तो वो भी आप खा सकते हैं। और पनीर की कुछ पकवान बना सकती हैं आप, पनीर या टोफू टिक्का बाइट्स बना सकती हैं, सूजी के आइटम बना सकती हैं जो फटाफट से बन जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: सूजी की इडली है, जैसे उत्पम है, और ओट्स वाली चीज़ें भी आप खा सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बना सकती हैं, और दही में मौसमी फल मिला करके भी आप बहुत एक स्वीट सा एक पकवान बना सकती हैं।
1: बिल्कुल। और मौसमी फल जो अवेलेबल हैं उन सब का मज़ा ले सकती है आप फ्रूट सैलेड के रूप में।
0: हाँ, तो इस तरह से आप चटपटे स्वादिष्ट स्नैक्स फटाफट से बना सकती हैं, और जो आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा भी करते हैं और आपके सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। तो डिम्पल घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है कि कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, तो हम अपनी सखियों से इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। तो आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर ये गाना, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार शानू ने। फिल्म है कर्तव्य।

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म है खुद्दार।

90. श्रोताओं, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गाना। फिल्म है खून भरी मांग।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफर बस यहीं तक। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं विकास चर्चा और आज का विषय है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जो गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। इसे 8 अप्रैल 2015 को छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने और वित्तीय सहायता सुलभ कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत ऋण व्यावसायिक गतिविधियों के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित है, जैसे किसी शिशु के लिए 50,000 तक का ऋण है और जो किशोरावस्था के हैं उनके लिए 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है और जो तरुण अवस्था में है उनके लिए 5 लाख से 10 लाख तक के ऋण का प्रावधान है। तरुण प्लस 10 लाख से 20 लाख तक का ऋण यह उन उद्यमियों के लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी का ऋण लिया है और सफलतापूर्वक चुकाया है। ब्याज दरें इसकी अलग अलग हैं और अलग अलग बैंकों में इसकी योजनाएं अपनी प्रोफाइल के आधार पर तय होती हैं।

अभी आपने सुना विकास चर्चा, ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से, वहां से सुनते हैं हिंदी में दोपहर समाचार का आज का अंक। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक

0: चीजें हैं एजुकेशन में, आईआईटी, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर

0: धुने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी सीएपीएस समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने दो थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट यूजी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम रामू बिचारा राम साहब।
1: राम राम रेखा भाई साहब, राम राम कृषि जगत होने वाला संगला किसान बयान भी अपनो राम राम सा।
0: बिल्कुल सा, देखो सा कार्यक्रम टाइम भी हो और आप ही हगला किसान भाई बहना रे वास्ते कार्यक्रम कृषि जगत लेना आया। और आज आप ही बात करांगा किसान री बात में कि जलवायु परिवर्तन रो अपने खेती पे कई प्रभाव है सा।
1: बिल्कुल सर, देखो सर, जलवायु परिवर्तन के कारण अनिश्चित बारिश, बढ़ते तापमान और चरम मौसमी घटनाएं, जड़ी में बाढ़ भी है, सूखा भी है, या कही है कि फसल की पैदावार में भारी कमी आई है। कीटा और बीमारियों और प्रकोप भी बढ़ रहा है, जड़ियों किसान भाई आर्थिक नुकसान और खाद्य सुरक्षा और खतरों झेलना पड़ रही है। ऐसा खेती में जलवायु परिवर्तन रे आपा देखा तो अणी में फसल पैदावार में गिरावट और बढ़ता मान तापमान में, विशेषकर अपनी जो रबी फसल है जैसे गेहूँ के लिए हानिकारक है। ऐसा तापमान में वृद्धि व्यवहार के कारण गेहूँ की उपज में आप मान सकें कि 4 और 5 करोड़ टन की आप सब तरफ देखा तो कमी आवे। ऐसा
0: देखो साहब, अंडे साथ में अगर आप ही बात करा तो बारिश रो जो तरीको है वणी में भी तो अनिश्चितता वणी तकी रेवे। जिस तरह की मानसून ने टाइम में बदलाव, अत्यधिक बारिश खेता में जल भराव और मिट्टी रो कटाव भी वेवेसा, तो वणियों कई वेवे कि आपने जो खरीफ री फसल है विने भी भारी नुकसान पहुँचे सा।
1: बिल्कुल सा, कीट और रोगारू प्रकोप भी देखो आप देख सका कि गर्म और अगर मौसम है तो वहाँ में कीटा में कीट और फफूंद रहे पनपने लिए भी ये अनुकूल रहे है। जड़ियों का ये कि फसला में बीमारियां बढ़े हैं और कीटनाशक रो खर्च भी बढ़ जावे। ऐसा
0: देखो साहब, वनडे साथ में अगर खरीफ फसला ने नुकसान पहुंच रहे हो तो आप ही वनडे साथ साथ में जितनी भी फसला है वी अगर खराब हैगा तो वणी में बीमारियां भी बढ़ेगा सा, और लारे लारे जितना भी कीटनाशक है बड़ा सब रो खर्चो भी बढ़ जाएगा सा। वनडे साथ में अगर आप ही बात करा कि जल संकट री, तो अणी गर्मी बढ़वारे कारण जो मिट्टी री नमी तेजी सूखवा लाग जावे, जंडे कारण भी सिंचाई रे वास्ते भूजल पे दबाव बढ़ रहा है, और जो असिंचित क्षेत्र है वणी में सूखो पड़वारो खतरो भी अधिक वही रो है सर।
1: बिल्कुल सर, अणि चुनौती ने निपटवार वास्ते देखो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है वो कृषि और कृषि अनुसंधान केंद्र, मौसम आधारित फसल बीमा, कम पानी में उगने वाली किस्म और टिकाऊ कृषि पद्धति ने अपना आप भी जोर दे रहा है सर।
0: बिल्कुल सा, देखो सा अंडे साथ में अगर आप ही बात करा कि भाई जो जलवायु परिवर्तन है यो आप सब जाना है कि वैश्विक रूपों एक खतरो बन गयो है, और यदि आप ही वर्तमान समय में अगर आप ही देखा तो यो जो त्रिवी गर्मी पड़ रही है या अधिक बारिश है या अधिक सर्दी है, यो सब कारण जलवायु परिवर्तन रो आपने देखवा मिल रो सा। और अंडा जतरा भी प्रभाव है भी अपनी खेती बाड़ी पे भी आप ही देख रहे हैं। देखो सा, बात तो आप ही और करांगा लेकिन आप जटा पहला को देख राजस्थान गीत सुनाई दा सा।
1: हाँ सर।

0: दी, ये देख
1: कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: तो देखो रेखा भाई साहब, बढ़िया सो राजस्थानी गीत हुए और साथ साथ आपा संदेशा भी होनी है। और आपा बात करिए, देखो कि जलवायु परिवर्तन खेती पे कई प्रभाव पड़े वहीं पे।
8: बिल्कुल सा, देखो सा, आपा सब जानी रहा कि जो जलवायु परिवर्तन कोई एक देश या राष्ट्र संबंधित अवधारणा नहीं है, अभी तो आपा सब जाना है कि यो एक विश्व स्तर पे या वैश्विक अवधारणा है, जो कि समस्त पृथ्वी वास्ते चिंता रो कारण भी बनियो जाई रो है सा।
7: बिल्कुल सा।
8: और जलवायु परिवर्तन भारत सहित पूरी दुनिया में बाढ़, सूखा, कृषि संकट, खाद्य सुरक्षा, बीमारियां आदि रो खतरों भी बढ़ रहे हैं।
7: बिल्कुल सा। और देखो आप बात कर रहा हूँ ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की, तो अंडे अनुसार भारत में जो जलवायु परिवर्तन है वो सब ज़्यादा प्रभावित अपने जो 10 शीर्ष देश है वहीं में शामिल है सा। जलवायु री बदलती परिस्थितियों में कृषि रो सब ज़्यादा प्रभावित कर रही है, क्योंकि यानी में लंबा समय में ये मौसमी कारक जैसे तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है आदि पे निर्भर करे। और जलवायु परिवर्तन में कृषि रा कई प्रकार प्रभावित कर सके, जिससे कि उत्पादन में भी कमी वैसा।
8: देखो साहब, अंडे साथ में अगर आप ये बात करा ग्लोबल वार्मिंग री, तो अंडे कारण विश्व में कृषि री जो अगर आप ही देखा तो अणी सदी में गंभीर गिरावट आपने देखवा मिल रही है। जलवायु परिवर्तन पे अंडे साथ में जो अंतर सरकारी पैनल के अनुसार वैश्विक कृषि पे जलवायु परिवर्तनों कुछ प्रभाव नकारात्मक भी वेगा सा। और अंडे साथ में अगर देखा तो अणियों अपनी जो फसल है वह लाभान्वित भी वेगा, किंतु फसल उत्पादकता और जलवायु परिवर्तन रो कुल प्रभाव सकारात्मक को ज़्यादा नकारात्मक आपने देखवा मिलेगा सा।
7: बिल्कुल सा। देखो जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में भी काफ़ी फर्क पड़े और अणी उनका ही वेगा कि अपने जो खेती बाड़ी है वहीं माँ पे प्रभाव भी पड़े। भारत में जो जल स्रोत और भंडार जो है वे तेजियों सिकुड़ रहा है, जणियों का ये कि किसान भाई ने परंपरागत सिंचाई में तरीका छोड़ने पानी की खपत कम करवा वाला आधुनिक तरीकाओं फसल अपनाने वेगा। ग्लेशियर पिघलने में बड़ी जो नदियाँ हैं वह जल संरक्षण क्षेत्र में दीर्घावधि रूप कमी भी आई रही है, जिन में कृषि और सिंचाई रा जलाभाव गुजरना भी पड़ रहा है। एक रिपोर्ट में देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन की वजह प्रदूषण, भू क्षरण और सूखा प्रभाव वाली जो है वे बड़ी में कृषि भूमि में गुणवत्ता में भी कमी आएगी है सर।
8: देखो सर, साथ में अगर आप देखा तो औसत तापमान में भी आपने दिन भर में जो वृद्धि देखवा मिल रही है वो कई दशकों अपने तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। औद्योगिकरण और आप सब देखा कि आसपास जितनी भी खेती की जमीन है अणी भी अगर कृषि व्यवसाय भी कम हो रहा है, तो अंडे कारण जो जलवायु है वंडो तापमान भी बढ़ रहे हो ऐसा।
7: बिल्कुल सा। और आजकल देखा जाए तो वर्षा पैटर्न में भी बदलाव आई है। देखो भारत में अपने बात करना तो 2/3 कृषि क्षेत्र जो है वे वर्षा पर निर्भर हैं और कृषि की उत्पादकता वर्षा और अंडी मात्रा पर निर्भर करें। वर्षा की मात्रा में तरीकाओं में परिवर्तन के कारण अपना जो मिट्टी क्षरण है और मिट्टी की नमी है वहीं पर भी प्रभाव पड़े, और जलवायु के कारण तापमान में वृद्धि के कारण अणियों का यह कि मिट्टी में नमी समाप्त हो जाए, अंडे अतिरिक्त जो तापमान व कमी है वहीं में वृद्धि के प्रभाव वर्षा पर भी प्रभाव पड़े, जिन कारण अपने भूमि रो अपशय

0: भी वे और सुखारी संभावना भी बढ़ जावे सा।
1: बिल्कुल सा, देखो सा, अपना अगला किसान भाई बहन अगर खेती बाड़ी करे तो आपने जो जलवायु परिवर्तन है अंडा प्रभाव भी साथ साथ में ध्यान में रखे और पचे ही खेती बाड़ी करे तो आप ही की सका गई जो भी फसल भी ले रहा है बहुत अच्छा उत्पादन वेगा सा।
0: बिल्कुल सा, तो देखो यहाँ तो बढ़िया जानकारी दी थी और अभी आप बोलो तो एक और बढ़िया सो गीत होना सा।
1: हाँ सर।

0: प्रस्तावना। जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: तो देखो रेखा भाई साहब, बढ़िया सो राजस्थानी गीत हुनियो और साथ साथ अपना हुनिया जलवायु संदेश भी। और अभी आप देखो कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और आप बात करा कि विदेशी सब्जियारी जो पारंपरिक खेती है वणी में किसान भाई ने कतरो लाभ मिल सके सर।
2: बिल्कुल सर, अगर विदेशी सब्जियारी आप ही बात कर रहे हैं तो ब्रोकली है, लाल है, पीली है, ये जो शिमला मिर्चियाँ हैं बंडे, साथ में चेरी टमाटर है, लेट्यूस है, चाइनीज केबेज है, केल है, अड़ी सवा सब्जियारी जो मांग है वो रेस्टोरेंट में भारी मांग है। और यह आप सब जाना कि अंडे साथ में झुकीनी री मांग भी खूब सारी बढ़ रही है सा। पारंपरिक खेती के मुकाबले अगर अंडी खेती किसान और करेगा तो आप ही कह सका कि बड़ा स्वयं रे वास्ते और व्यवसाय रे वास्ते बहुत अधिक फायदेमंद।
1: बिल्कुल सर, देखा बात देखो आप बात करा।

0: की ब्रोकलेरी तो नहीं, मैं फूल गोभी जो दिखवा वाली है, जो हरी सब्जी है, अंडी बाजार में बहुत अच्छी मांग है, और चाइनीज के भी केबेज पोक चाई ये जो है बर्गर पिज्जा सलाद अने में मुख्य रूप इस्तेमाल वे तो अणि में कही है कि अगर किसान भाया जो असी सब्जियां जिस तरह चेरी टमाटर है, ये जो सामान्य टमाटर वो छोटा वे और मीठा भी वे, और ये अगर आप अपनी खेती करा तो अणि में आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी कमाई सका। अंडे अलावा देखो ज़्यादातर विदेशी सब्जियों में मूल रूप ठंडा मौसम री फसल है, अणि में खेती के लिए सितंबर और अक्टूबर के बीच में नर्सरी तैयार करने अणा ने अपन उगावा, तो यह अपने गर्मियों में पाली हाउस में या पचे नेटी तकनीक में उगा आना ने अपना ही ने अपा अच्छो खासा मुनाफा कमाई सका सा।
1: बिल्कुल सा, देखो सा, अंडे साथ में उत्पादन की बढ़ती मांग ने कम जगह पे नियंत्रित वातावरण में बेहतर उत्पादन, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी लाभ, साथ में निर्यात्री बेहतर संभावनाएं भी, जो विदेशी सब्जियां हैं बनारे उत्पादन आपने देखवा मिले सा।
0: बिल्कुल सा, तो देखो यार तो अच्छी बात की दी, और अभी चलते चलता एक और गीत होना सा।
1: हाँ सा।

0: तो देखो सायो, तो हूँ राजस्थान गीत और अबे घड़ियाली देखा, तो आपने भी अनेक कार्यक्रमों विदा लेवारो टाइम भी चाला सा
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम
1: सा।
0: सा।
2: जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के दो दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। श्री सिंह ने आंध्र प्रदेश के लिए अधिक निधि आवंटन के प्रयासों का आश्वासन दिया।
3: अभी हमने एक धर्मावरण में अप्रूव किया है क्लस्टर और कल मैं विशाखापट्टनम में ग्लास फाइबर के एक यूनिट का उद्घाटन भी करूंगा और भारत सरकार ने 10,860 करोड़ का PLI दिया है टेक्सटाइल को। आंध्र अधिक से अधिक शेयर ले, ये भी रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ।
2: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंद्र सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्र यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून तक वहां पहुंचने की उम्मीद है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून में देशभर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दोपहर के 3:05 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब यहीं पर विराम लेते हैं। सांध्यकालीन सभा के साथ शाम 5 बजे फिर से उपस्थित होंगे।

0: हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के बज गए हैं 5 और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। मैं हूं आपकी आज की होस्ट वंदना और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है गीतांजलि। आज बात होगी भारत के युवाओं और औद्योगिकरण की, खासकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर की, जो देश के भविष्य को नई दिशा दे रहा है। शौर्य गाथा में याद करेंगे परमवीर योद्धा लांस नायक एल्बर्ट इक्का के अदम्य साहस को।
1: मनोरंजन जगत से जानेंगे ताज़ा न्यू रिलीज और अभिनेत्री अनुप्रिया गोयनका से जुड़ी दिलचस्प बातें। साथ ही करेंगे चर्चा सिनेमा के दो शानदार कलाकारों पंकज कपूर और एनेट बेनिंग की।
0: इतिहास और संस्कृति के सफर में याद करेंगे पृथ्वीराज कपूर, सुनीति कुमार चटर्जी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के योगदान को।
1: इसके अलावा रहेगा आज के इतिहास में खेल जगत की ताज़ा हलचल के साथ स्पोर्ट्स अपडेट और निवेशकों के लिए शेयर मार्केट की अपडेट भी।
0: तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन का ये सफर अब शुरू होता है।

एक आइडिया जो दुनिया बदल दे, एक एक्सपेरिमेंट जो इंडस्ट्री का फ्यूचर डिसाइड करे, और एक यंग माइंड जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दे। जी हाँ।

0: दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इंडिया के फ्यूचर से, यूथ इंडस्ट्रियलाइजेशन में रोल ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर की। दोस्तों, आज का यूथ सिर्फ जॉब्स ढूंढने वाला नहीं है, बल्कि नए आइडियाज़ क्रिएट करने वाला जनरेशन है। AI हो, रोबोटिक्स हो, ग्रीन एनर्जी हो या स्पेस टेक्नोलॉजी, हर जगह यूथ और R&D का कॉन्ट्रीब्यूशन रैपिडली बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव सफ़र।
1: तो गीतांजलि, मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि आखिर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है?
0: वंदना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट, मतलब फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज और प्रोडक्शन सिस्टम्स की ग्रोथ। लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ मशीन्स तक लिमिटेड नहीं है। आज इंडस्ट्रीज स्मार्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रही है, जैसे AI, IoT, डेटा साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है नए आइडियाज़ बनाना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करना और इनोवेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट करना। सिंपल वर्ड्स में देखें तो रिसर्च पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कवर करता है और डेवलपमेंट उन्हें रियलिटी में बदलता है।
1: तो यानी कि गीतांजलि, आज का जो यूथ है वो इनोवेटिव बन चुका है, क्योंकि उनके पास टैलेंट भी है और क्रिएटिविटी भी। आज के यूथ स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स नए ऐप्स भी डेवलप कर रहे हैं, साथ ही साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी बना रहे हैं, साथ में हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं, स्टार्टअप्स लॉन्च कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज का इंडस्ट्रियल सेक्टर डिग्री से ज़्यादा स्किल्स को इम्पोर्टेंस देता है।
0: आज यंग इनोवेटर्स फोकस कर रहे हैं सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी पर, स्मार्ट सिटीज़, हेल्थ केयर इनोवेशन पर। मतलब यूथ सिर्फ फ्यूचर का वेट नहीं कर रहा है, यूथ फ्यूचर क्रिएट कर रहा है। लेकिन वंदना, हर जर्नी में चैलेंजेस भी होते हैं।
1: सही कहा, बहुत से यंग स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर या फिर लिमिटेड रिसर्च फैसिलिटीज़, पैसों की भी कमी होती है और साथ ही गाइडेंस भी नहीं मिल पाता, और वहीं एक डर रहता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। कभी कभी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम स्मॉल टाउन से हैं, हम छोटे शहर से हैं, तो क्या हम रिसर्च या इनोवेशन में सक्सेसफुल हो भी सकते हैं? और जवाब है बिल्कुल, हो सकते हैं।
0: आज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स और इनोवेशन स्कीम्स ने अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेसिबल बना दिया है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कहाँ से हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सीखने और इनोवेट करने के लिए कितने पैशनेट हो।
1: गीतांजलि, आज कंपनीज़ उनको प्रेफर करती है जो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, बल्कि नए सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो इंटर्नशिप करिए, मिनी प्रोजेक्ट्स बनाइए, हैकेथन्स में पार्टिसिपेट करिए, रिसर्च पेपर्स एक्सप्लोर करिए, स्टार्टअप्स कल्चर को समझिए। हर स्मॉल एफर्ट आपको फ्यूचर रेडी बनाता है। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स यूथ को एनकरेज कर रहे हैं कि वो इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंट्रीब्यूट करें। इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी स्ट्रांग होता है जब यूथ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों में एक्टिव रोल प्ले करें। और याद रखिए साथियों, हर सक्सेसफुल इंडस्ट्री कभी एक स्मॉल आइडिया ही थी।
0: दोस्तों याद रखिए, मशीन इंडस्ट्रीज़ को पावरफुल बनाती है, लेकिन यंग आइडियाज़ इंडस्ट्रीज़ को मीनिंगफुल बनाते हैं। आज का यूथ सिर्फ फ्यूचर का हिस्सा नहीं है, यूथ ही फ्यूचर का क्रिएटर है। हो सकता है आपका एक प्रोजेक्ट कल एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बन जाए। मिलते हैं फिर एक नए इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे क्रिएटिव एंड कीप बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: तो गीतांजलि, आज का युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं है, बल्कि इनोवेशन, रिसर्च और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का चेहरा बन चुका है। चाहे बात AI टेक्नोलॉजी की हो, मैन्युफैक्चरिंग हब्स की या फिर स्टार्टअप्स की, भारत का यूथ आज हर क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है।
3: बिल्कुल वंदना, और किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी नहीं होती, बल्कि वो लोग होते हैं जो देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। एक तरफ युवा देश को इनोवेशन से आगे बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ हमारे सैनिक अपने साहस से देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
2: और जब भी वीरता, बलिदान और देशभक्ति की बात होती है तो भारतीय सेना का एक नाम, एक अमर योद्धा का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है, लांस नायक एल्बर्ट इक्का। एक ऐसा जवान जिसने 1971 के युद्ध में अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों के सामने डटकर मुकाबला किया और अपने अद्भुत साहस से भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए।
3: बिल्कुल वंदना, एल्बर्ट इक्का सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, बल्कि साहस, त्याग और देशभक्ति की जीवित मिसाल थे। उनका जन्म 27 दिसंबर 1942 को झारखंड के गुमला जिले के जरी गांव में हुआ था। वे उरांव आदिवासी समुदाय से थे। बचपन से ही उन्हें जंगलों में शिकार और कठिन परिस्थितियों में रहने का अनुभव था, जिसने आगे चलकर उन्हें एक बेहतरीन योद्धा बनाया।
2: कहते हैं ना, कुछ लोग जन्म से ही वीर होते हैं। एल्बर्ट इक्का जी भी उन्हीं में से थे। बचपन में हॉकी खेलने के शौकीन और बेहद फुर्तीले एल्बर्ट ने कम उम्र में ही सेना में जाने का सपना देख लिया था। 27 दिसंबर 1962 को वे भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए और बाद में उन्हें ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स की 14th गार्ड्स बटालियन में भेजा गया।
3: अब कहानी पहुंचती है 1971 के भारत पाक युद्ध तक, जब पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में युद्ध चल रहा था। भारतीय सेना को गंगा सागर क्षेत्र पर कब्जा करना था, जो रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। अगर यह मिशन सफल नहीं होता तो दुश्मन अगरतला और आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़ा खतरा बन सकता था।
2: 3 दिसंबर 1971 की रात, चारों तरफ गोलियों

0: की आवाज़, बारूदी सुरंगें और दुश्मन की मशीन गन से लगातार हो रही फायरिंग। भारतीय सैनिक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुश्मन का LMG बंकर भारी नुकसान पहुंचा रहा था। तभी एल्बर्ट इक्का जी ने बिना अपनी जान की परवाह किए अकेले ही दुश्मनों की ओर दौड़ लगा दी। भारी गोलाबारी के बीच उन्होंने दुश्मन के बंकर तक पहुंचकर दो पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और मशीन गन को शांत कर दिया।
1: लेकिन दोस्तों, असली वीरता भी बाकी थी। एल्बर्ट इक्का जी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, पेट और शरीर में गोलियां लग चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तभी एक दूसरी मीडियम मशीन गन पोस्ट भारतीय सैनिकों पर हमला करने लगी। इतनी चोटों के बावजूद एल्बर्ट इक्का रेंगते हुए उस बंकर तक पहुँचे, ग्रेनेड फेंका और फिर अंदर घुसकर दुश्मन सैनिक को ख़त्म कर दिया। उस एक कदम ने पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया।
0: सोचिए गीतांजलि, एक जवान जो खुद ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा हो, फिर भी अपने साथियों की सुरक्षा के लिए लड़ता रहे, यही तो भारतीय सेना की असली पहचान है।
1: वंदना, और इसी अद्भुत वीरता और बलिदान के लिए एल्बर्ट इक्का जी को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया गया। यह सम्मान केवल उन सैनिकों को दिया जाता है जो दुश्मन के सामने सर्वोच्च साहस और आत्म बलिदान का परिचय देते हैं। अब तक यह सम्मान बहुत कम सैनिकों को मिला है और उनमें एल्बर्ट इक्का का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।
0: और दोस्तों, उनके सम्मान में सिर्फ मेडल ही नहीं बल्कि देश भर में कई स्मारक भी बनाए गए हैं। रांची का प्रसिद्ध एल्बर्ट इक्का चौक, त्रिपुरा का एल्बर्ट इक्का पार्क और भारत सरकार द्वारा जारी किया गया डाक टिकट, ये सब उनकी वीरता की याद दिलाते हैं।
1: एक और खास बात, 1971 के युद्ध में परमवीर चक्र पाने वाले वे पहले सैनिकों में से एक थे और पूर्वी मोर्चे के सबसे बड़े नायकों में गिने जाते हैं। उनकी कहानी सिर्फ सेना की कहानी नहीं बल्कि हर भारतीय के गर्व की कहानी है।
0: और आज जब हम सुरक्षित अपने घरों में बैठे हैं, तो याद रखिए, इस आज़ादी के पीछे ऐसे ही वीर जवानों का बलिदान छुपा है। एल्बर्ट इक्का ने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि देश सबसे ऊपर होता है।
1: और शायद इसीलिए कुछ लोग दुनिया छोड़कर भी कभी नहीं जाते हैं, वे इतिहास बन जाते हैं।

0: तो गीतांजलि, आज है फ्राइडे और आज का दिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का खास दिन होता है। तो चलिए जानते हैं इस फ्राइडे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या एक्साइटिंग लेकर आई है।
1: वंदना, तेलुगु फिल्म मरीचिका मिस्ट्री और ड्रामा का मिक्स लग रही है, स्टारिंग विराज अश्विन और अनुपमा परमेश्वरम। बॉलीवुड में भी द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो स्टाइल एंटरटेनमेंट लेकर आ रही है विद जैकी श्रॉफ। थ्रिलर लवर्स के लिए भी ऑप्सीज भी रिलीज हो रही है, जिसका डार्क पोस्टर ऑलरेडी बस क्रिएट कर रहा है।
0: और मलयालम सिनेमा फैंस के लिए है कोलम कोटा कंपनी। तो दोस्तों, रेडी हो जाइए वीकेंड एंटरटेनमेंट के लिए।

0: तो दोस्तों, भारतीय इतिहास, राजनीति, साहित्य और सिनेमा, हर क्षेत्र में कुछ ऐसे नाम रहे हैं जिन्होंने अपने काम से सिर्फ पहचान नहीं बनाई बल्कि एक युग रच दिया। आज के इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही महान हस्तियों की।
1: शुरुआत करते हैं अनुप्रिया गोयनका से। अनुप्रिया गोयनका का जन्म 29 मई 1987 को कानपुर में हुआ। एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद उन्होंने एक्टिंग का ड्रीम चूज किया। एक सेफ करियर ऑप्शन छोड़कर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्ट्रगल करना इजी नहीं है, लेकिन यही बात उनकी जर्नी को इंस्पायरिंग बनाती है।
0: उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर और एडवर्टाइजमेंट से करी। बहुत लोग डायरेक्टली फिल्म्स में आना चाहते हैं, लेकिन अनुप्रिया ने स्टेप

0: बाय स्टेप लर्निंग पर बिलीव किया। उन्हें हमने कई टीवी कमर्शियल्स में भी देखा है, साथ ही उन्होंने शॉप सीजे नामक होम शॉपिंग चैनल में एंकर के रूप में काम किया।
1: उनकी कुछ फेमस मूवीज़ हैं बॉबी जासूस, पाठशाला, ढिशुम, पद्मावत। उन्होंने अपना वेब डेब्यू स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर से किया था। उनकी कुछ फेमस वेब सीरीज़ हैं सेक्रेड गेम्स, क्रिमिनल जस्टिस, असुर। 2020 में टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमन की सूची में गोयनका 8वें स्थान पर थी।
0: उनकी जर्नी के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने सिर्फ ग्लैमरस रोल्स नहीं चूज़ किए, बल्कि उन्होंने मीनिंगफुल और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को प्रेफरेंस दिया। और आज के यूथ के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि डोंट जस्ट चेज पॉपुलैरिटी, चेज इक्वालिटी।
1: तो दोस्तों, अगर आप एक्टिंग, फिल्म मेकिंग, कॉन्टेंट क्रिएशन या मीडिया फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो याद रखिए टैलेंट मैटर करता है, बैकग्राउंड नहीं। इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब कॉन्टेंट, पॉडकास्ट, थिएटर, शॉर्ट फिल्म, अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं।
0: तो दोस्तों, अनुप्रिया की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहना चाहिए और कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
1: शुरुआत करते हैं भारतीय अभिनय की उस आवाज़ से जिसे लोग एक्टिंग स्कूल कहते हैं, पंकज कपूर। थिएटर से लेकर फिल्मों और टीवी तक उन्होंने हर किरदार को इतनी गहराई दी कि वो हमेशा याद रहेगा। ऑफिस ऑफिस के मुसद्दी लाल हो, मकबूल के जहांगीर खान हो, या जेबान संभाल के मोहन भारती, या एक डॉक्टर की मौत का संघर्ष करता डॉक्टर, हर किरदार में उनका अभिनय अलग दिखता है।
0: बिल्कुल, पंकज कपूर जी के अवार्ड्स की बात करें तो इन्होंने 3 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते हैं, राख के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, एक डॉक्टर की मौत के लिए स्पेशल जूरी अवार्ड और मकबूल के लिए फिर से नेशनल अवार्ड। इसके अलावा उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला है।
1: उनकी खासियत यही रही कि उन्होंने कभी लाउड एक्टिंग नहीं की, बल्कि छोटी छोटी एक्सप्रेशन से, डायलॉग डिलीवरी से किरदार में जान डाल दी। आज भी एक्टिंग सीखने वाले स्टूडेंट्स उनके परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं।
0: और अब बात करते हैं एक ऐसी हॉलीवुड अभिनेत्री की जिन्हें एलिगेंस और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, एनेट बेनिंग।
1: अमेरिकन सिनेमा में एनेट बेनिंग का नाम बेहद सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने अमेरिकन ब्यूटी, बीइंग जूलिया, द किड्स आर ऑल राइट और न्याट जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। उनकी एक्टिंग की सबसे बड़ी खासियत है इमोशनल डेप्थ। वो किरदार को सिर्फ निभाती नहीं है, जीती हैं।
0: और अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें कई बार एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके अलावा उन्हें बाफ्टा नॉमिनेशंस और 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स भी जीते। हॉलीवुड में उन्हें वर्सेटाइल और ग्रेसफुल एक्ट्रेस में गिना जाता है।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: और अब बात करते हैं उस नेता की जिन्हें भारत के किसानों की आवाज कहा गया, चौधरी चरण सिंह।
4: दोस्तों, चौधरी चरण सिंह सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो उस भारत की सोच थे जो खेतों में बसता है। उन्होंने हमेशा कहा कि अगर भारत को मजबूत बनाना है तो गांव और किसान मजबूत होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक साधारण किसान परिवार से निकलकर उन्होंने देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई।
3: उनकी राजनीति सत्ता के लिए नहीं, बल्कि किसानों, मजदूरों और ग्रामीण भारत की समस्याओं के समाधान के लिए जानी गई। उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म करने में अहम भूमिका निभाई और किसानों के अधिकारों के लिए कई बड़े फैसले लिए। इसी वजह से उन्हें चैंपियन ऑफ इंडिया पीसेंट्री भी कहा जाता है।
4: साल 1979 में वो भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि उनका कार्यकाल लंबा नहीं रहा, लेकिन उनकी सादगी, ईमानदारी और ग्रामीण विकास को लेकर उनकी सोच आज भी याद की जाती है। चौधरी चरण सिंह जी एक शानदार लेखक भी थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि और ग्रामीण व्यवस्था पर कई किताबें लिखी, जिनमें किसान केंद्रित विकास मॉडल की बात की गई।
3: वंदना, और अब एक बड़ी बात, भारत सरकार ने वर्ष 2024 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। ये सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि भारत के किसान वर्ग की उस आवाज़ को दिया गया जिसने दशकों तक गांव की बात देश के सामने रखी।
4: तो दोस्तों, चौधरी चरण सिंह हमें ये सिखाते हैं कि असली नेतृत्व वही है जो देश के सबसे आम इंसान की तकलीफ को समझे।
3: अब चलते भारतीय सिनेमा की जड़ों की तरफ। एक ऐसा नाम जिसके बिना बॉलीवुड का इतिहास अधूरा, पृथ्वीराज कपूर।
4: पृथ्वीराज कपूर सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वे भारतीय थिएटर और हिंदी सिनेमा के फाउंडेशन पिलर्स में से थे। उन्होंने 1944 में पृथ्वी थिएटर्स की स्थापना की, जिसने पूरे देश में थिएटर संस्कृति की नई पहचान बनाई।
3: फिल्म मुगले आजम में अकबर का उनका किरदार आज भी लेजेंडरी माना जाता है। उनकी भारी आवाज़, शाही पर्सनैलिटी और पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें अलग पहचान दी।
4: देश ने भी उनके योगदान को बड़ा सम्मान दिया। उन्हें 1969 में पद्म भूषण मिला और 1971 में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब

0: इकबाल के अवार्ड से सम्मानित किया गया।
1: और शायद यही वजह है कि कपूर फैमिली आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फैमिलीज में गिनी जाती है।
0: तो चलिए उनकी याद में एक गीत को सुनते हैं।

0: एकता को भाषाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। वो मानते थे कि भारत की विविध भाषाएं अलग अलग होते हुए भी एक साझा संस्कृति धारा से जुड़ी हुई है।
1: उनकी विद्वता का सम्मान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुआ। कई इंटरनेशनल विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने उनके शोध को बेहद महत्वपूर्ण माना
0: और उनकी महान सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण और बाद में पद्म विभूषण से सम्मानित किया।
1: इतना ही नहीं, वे साहित्य अकादमी से भी जुड़े रहे और भारतीय साहित्य तथा भाषाओं के विकास में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।
0: तो दोस्तों, सुनीति कुमार चटर्जी हमें ये सिखाते हैं कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, वो इतिहास भी होती है, संस्कृति भी, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवित विरासत भी है।

0: दोस्तों, भारत की पहचान सिर्फ उसकी संस्कृति या इतिहास से नहीं बनती, बल्कि उन भाषाओं से बनती है जिनमें इस देश की आत्मा बसती है। अब बात ज्ञान और भाषा के क्षेत्र की ओर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान विद्वान की जिन्होंने भारतीय भाषाओं को नई पहचान दी।
1: जी हाँ वंदना, हम बात कर रहे हैं महान भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी की, एक ऐसे स्कॉलर जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भारतीय भाषाओं, साहित्य और संस्कृति को समझने और दुनिया तक पहुँचाने में लगा दी।
0: 1890 में पश्चिम बंगाल में जन्मे सुनीति कुमार चटर्जी, वे बचपन से ही बेहद मेधावी थे। उन्हें भाषाओं से इतना प्रेम था कि उन्होंने संस्कृत, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, ग्रीक और कई विदेशी भाषाओं का गहरा अध्ययन किया,
1: और यही कारण था कि आगे चलकर वे भारत के सबसे बड़े लिंग्विस्ट यानी भाषाविदों में गिने जाने लगे। उन्होंने भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति, उनके विकास और आपसी संबंधों पर ऐतिहासिक शोध किया।
0: दोस्तों, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बंगाली लैंग्वेज आज भी भाषा विज्ञान के क्षेत्र में लैंडमार्क मानी जाती है। उनका मानना था कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि किसी सभ्यता की आत्मा होती है,
1: और यही सोच उन्हें बाकी विद्वानों से अलग बनाती है। उन्होंने भारतीय संस्कृति

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, बात करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट की। IPL 2026 का दूसरा क्वालिफायर आज शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल गुजरात टाइटंस के बीच महाराजा यदुवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जीतने वाली टीम 31 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ फाइनल खेलेगी।
4: उसी के साथ ले चलते हैं आपको आज के इतिहास के पन्नों की ओर। आज ही के दिन सन 1865 में रामानंद चटर्जी का जन्म हुआ था। उन्हें इंडियन जर्नलिज्म का फादर माना जाता है।
3: आज ही के दिन 1906 में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म हुआ, एक प्रसिद्ध हिंदी निबंधकार जिन्होंने ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन किया।
4: 1892 में आज ही के दिन अल्फोंसिना स्टोनी, अर्जेंटीना के एक पोएट, इनका जन्म हुआ था।
3: 1933 में अब्दुल रहमान, सऊदी अरेबियन नॉवलिस्ट का जन्म हुआ।
4: साथ ही 1937 को हिबारी मिसोरा, जो कि एक जापानीज सिंगर है, उनका भी जन्म हुआ था।
3: आज के दिन 1953 में एडमंड हिलेरी एंड तेंजिन नॉर्वे माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने।
4: वहीं 1970 को यूनाइटेड रशिया ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था।
3: 2010 में भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने हेनान प्रांत के लुआंग में स्थित फर्स्ट सेंचुरी के श्वेतावश व्हाइट हॉर्स मंदिर का इनॉग्रेशन किया।
4: और अब जानकारी लेते हैं शेयर मार्केट की। तो निफ्टी 50 आज 23,547.75 पॉइंट्स पर बंद हुआ, -1.50% की घटत के साथ। वहीं BSE आज 74,775.74 पॉइंट्स पर बंद हुआ, -1.44% की घटत के साथ। साथ ही एक डॉलर की कीमत आज 94.90 रुपए देखने को मिली। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी, और इसी के साथ आज की जानकारी, आज की प्रेरणा और आज के शो को एंड करने का वक्त आ गया है। मैं थी वंदना और मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थी गीतांजलि।

आरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिका

0: की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह एकेडमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के संग। मैं हूं आपकी दोस्त संगीता आपके साथ, और सफ़र का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं मेरी जीवन साथी फिल्म से। आवाज़ दी है किशोर कुमार ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तेरी मुस्कान में कुछ ऐसा असर है, थकी हुई जिंदगी को भी सफर है। ना जाने कौन सी बात है तुझ में, तू याद आए तो दिल बेखबर है। श्रोताओं, अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हम किसी से कम नहीं फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत। फिल्म लता मंगेशकर, फिल्म है महबूब की मेहंदी और आवाज़ दी है लता जी ने।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, फिल्म संगीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत किशोर कुमार की आवाज में। इसी के साथ आपकी दोस्त संगीता को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, आइए अब जुड़ते हैं हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से और सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार 6:30 पर। 6:40 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और 6:45 पर होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने

0: व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद को या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने आज नीट पेपर लीक मामले में दायर याचिकाओं को लेकर भी सुनवाई की। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि इस मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इन याचिकाओं में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुनर्परीक्षा उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। डीडी न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने आश्वस्त किया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे। उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निचले स्तर पर प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। आज गुवाहाटी में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सेवा से समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों जीवन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि गांवों में हर व्यक्ति तक सुशासन और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में साझा सेवा केंद्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यशाला में राजस्थान सहित 7 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। राजस्थान में राज्यसभा के 3 सदस्यों का निर्वाचन होना है। नाम निर्देशन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी। 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान होने की स्थिति में 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सभी जिलों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। श्री गहलोत आज जयपुर में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 89 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स हैं। इनमें से 96%

0: पेंशन धारकों का सत्यापन हो चुका है। बैठक में विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीमों ने आज अजमेर और नीमराना क्षेत्र में एक साथ कार्रवाई करते हुए कुछ स्थानों पर छापेमारी की। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बल भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई संदिग्ध गतिविधियों और कुछ लोगों के आपराधिक नेटवर्क से जुड़े इनपुट के आधार पर की गई। एनआईए की अलग अलग टीमों ने अजमेर शहर और नीमराना के कुछ इलाकों में संदिग्ध ठिकानों पर दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सामग्री की जांच की। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई। हालांकि एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के निंदड़ में जल संरक्षण कार्यों में श्रमदान किया। इस अवसर पर उन्होंने वन विभाग की ओर से आयोजित इको ट्रेल ट्रेक का भी उद्घाटन किया। वन मंत्री संजय शर्मा भी वहां मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर जिले की अमरगढ़ ग्राम पंचायत में कलश यात्रा, पीपल पूजन और पौधरोपण गतिविधियों के साथ पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। जैसलमेर की भणियाणा पंचायत समिति में पारंपरिक संस्कृति और धार्मिक आस्था के अनुरूप पीपल पूजन किया गया। ग्रामीण महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिले के चिड़ावा क्षेत्र के बिलावड़ी जोहड़ में श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर उनकी सहभागिता बढ़ाना है।
1: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इसके बारे में और बेहतर स्थितियां होगी, लोग इससे जुड़ेंगे। मेन समस्या पानी की बताई गई है, पानी, लेकिन ये बताया ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं है, तो जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि जो इतनी मेहनत से लोगों ने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को बचाया जाए। समय लगेगा, लेकिन मुझे विश्वास आने वाले समय में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
0: अभियान के तहत सिरोही में CSR कार्यशाला रखी गई। इसमें अभियान के उद्देश्यों, जल संरक्षण गतिविधियों और जन भागीदारी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। चूरू और पाली सहित अन्य जिलों में भी जल चौपाल, स्वच्छता अभियान, तालाबों और जोहड़ों की साफ सफाई और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम रखे गए। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों से लोगों को सूरज की तपिश से राहत मिली है। कई जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जैसलमेर और फलौदी में आज भी तेज गर्मी का असर रहा। अन्य जिलों में दिन के समय तेज धूप रही, लेकिन दोपहर बाद कई हिस्सों में तेज हवाएं, आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर तथा कोटा संभागों में कुछ स्थानों पर तेज अंधड़, हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कई उत्तरी पूर्वी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कल भी राज्य के ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में सक्रिय हुआ है। इसके असर से अगले 2-3 दिन विशेष रूप से तेज आंधी, अंधड़ और इसके साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इलाकों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक तेजी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात होने की भी संभावना है। आंधी बारिश के असर से आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और ज्यादातर इलाकों से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।

0: प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए, इसका आलेख

0: की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जिले का सुदासरी गोडावन संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा रामदेवरा में भी गोडावन का आधुनिक प्रजनन केंद्र चलाया जा रहा है, जिससे इनकी संख्या 80 के करीब पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कभी गोडावन राजस्थानी इलाकों की पहचान हुआ करता था, किंतु एक समय में इनकी संख्या बहुत कम हो गई और ये पक्षी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए। अब इनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि 21 मई को गोडावन दिवस मनाया गया। इसे लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हुए। वन मंत्री संजय शर्मा ने डेजर्ट नेशनल पार्क की सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गोडावन प्रतिमाओं का भी अनावरण किया। जैसलमेर जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। यहां दिन का तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के झोंके लोगों को परेशान कर रहे हैं। झुलसाती गर्मी के कारण पर्यटन व्यवसाय भी थमासा नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की ओर से लोगों से खास ध्यान रखने की अपील की जा रही है। साथ ही विभिन्न संस्थाओं की ओर से जिले में परिंडे लगाए जा रहे हैं। सरहदों पर देश की सुरक्षा में जुटे सीमा प्रहरी अंगारे बरसाती गर्मी में भी मुस्तैदी के साथ चौकसी कर रहे हैं। जिले के दूरस्थ इलाकों तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें स्कूटी की सौगात दी गई है। इससे दूर दराज के गांव ढाणियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 50 ईवी स्कूटी का वितरण किया गया। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने इन स्कूटियों का वितरण किया। यह पहल नीति आयोग फंड से एएनएम की आवाजाही आसान हो सकेगी। इससे गर्भवती महिलाओं, बच्चों और ग्रामीण रोगियों तक टीकों और दवाइयों की पहुंच सुगम हो सकेगी। इस मौके पर सीएमएचओ डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने कहा कि इससे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की फील्ड विजिट में तेजी आएगी और इन सेवाओं की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी। जिले को 100 चिकित्सा और स्वास्थ्य उपकेंद्र की सौगात मिली है। बीते दिनों चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने जैसलमेर में ये घोषणा की। गोवट ग्राम पंचायत में जनसुनवाई करते हुए चिकित्सा मंत्री ने ये ऐलान किया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आगाज गड़ीसर सरोवर से हुआ। गंगा दशमी के अवसर पर आयोजित समारोह के माध्यम से अभियान की शुरुआत की गई। 5 जून तक चलने वाले इस अभियान में वर्षा जल संरक्षण जल की सफाई देवता बाबा रामदेव की स्थली रामदेवरा देश भर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अमृत भारत मिशन तेजी से कायाकल्प किया जा रहा है। यहाँ यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे तथा स्थानीय संस्कृति विरासत का मिश्रण देखा जा रहा है। रामदेवरा स्टेशन पर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुगम और सुरक्षित व्यवस्थाएं की जा रही है। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन का ऐतिहासिक और सामरिक रूप से बड़ा महत्व है। इसे देखते हुए स्टेशन पर आधुनिक प्रतीक्षालय, विशाल पार्किंग, एस्केलेटर और मुफ्त वाईफाई सुविधा विकसित की जा रही है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत शहर के चप्पे चप्पे पर करीब 250 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जिले में पिछले दिनों वाटर हॉल पद्धति से वन्य जीवों की गणना की गई। इस दौरान जल स्रोतों पर चिंकारा, नीलगाय, जंगली मरुबिल्ली, लोमड़ी और मोर सहित विभिन्न जीवों की उपस्थिति दर्ज की गई। जैसलमेर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। सुप्रीम कोर्ट देश री सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित राखी जिया फैसला 3 महीना री मियाद माए सुनावण रा हुकम दीना। पीएम सूर्य घर योजना रा तेज हालताई देश रा 40 लाख घरां रे छत माथे सूरज री रोशनी बिजली बनावण री मशीना लगाई जी। प्रदेश माए सत्यापन नी करा सक्या पेंशन लेवण वाला रो आवता 15 दिन माए सत्यापन करायो चावेला। और राज्य

0: जरा कुछ हल्का माए आंधी बारिशों लू और तपनों थोड़ो आराम मिलियो। आज और काल घनखर थोड़ा आंधी बारिश और ओला पड़बा सा रुचे तैचियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट देश री सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित राख्योड़ा फैसला 3 महीना री मियाद माए सुनावन रा हुकम दिना है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची री पीठ व्यक्तिगत आजादियों जुड़िया मामला माए तुरंत फैसला री जरूरत माथे जोर दिनो। पीठ कहो के जमानत री अर्जियां माथे हुकम वाई दिन या आवता दिन सुनाया या अपलोड कर दिया जाना चाहिए। अदालत कहो के जमानत या सजा निलंबन रो हुकम सुनावन रा तुरंत पाछे जेल रा अहलकारा ने जानकारी देवनो जरूरी है। पीठ कहो के विचाराधीन कैदी ने जमानत मिलताई वाई दिन या आवता दिन जेलू छोड़ दियो जावनो चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नीट पेपर लीक मामला माए दायर अर्जियां माथे आज ही सुनवाई कीनी। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधेरी पीठ कहो के ई मामला माए चूक री जिम्मेदारी तय करी जावनी चाहिए। आ अर्जियां माए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने ओजू बनावन या वन हटावन रो हुकम देवन और वाणी ठोड़ एक मजबूत और स्वायत्त निकाय बनावन री मांग करी ची ही। ई मामला माए आगली सुनवाई जुलाई महीना रा दूजा सप्ताह माए करी जावेला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मेडिकल कॉलेजा माए दाखिला सारू ओजू ली जावन वाली नीट परीक्षा व्यवस्थित तरीकाओं बिना गलती करावन रो भरोसो दिरायो है। दूरदर्शन समाचार सागे बातचीत रे दौरान श्री प्रधान भरोसो दिरायो के सरकार पीछे इम्तिहान बिना गलती करावन सारू जरूरी सगला जतन करया जा रहा है।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे। उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: पीएम सूर्य घर योजना रा तहत देश माए हाल ताई 40 लाख मकाना रे छत माथे सूरज री रोशनी बिजली बनावन री मशीन लगाती रिची है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आज सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीनी। वह कहो के आ योजना जनता ने बिजली रा ग्राहक री बजाय बिजली पैदा करण वाला बना रही है। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव री प्रक्रिया 1 जून न शुरू भेला। प्रदेश में राज्यसभा रा 3 सदस्यों रो चुनाव करो जावनु है। इसारू नाम पाना 8 जून ताई दाखिल करया जा सकेला। चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा बतायो के दाखिल करी जिया नाम पाना री जांच 9 जून न करी जावेला। पर्चा 11 जून ताई पाछा लिया जा सकेला। जरूरत पड़िया 18 जून न सवारे 9 सिंजा 4 बजा ताई वोट पड़ेला और वाई दिन सिंजा 5 बजा वोटा री गिनती करी जावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए पचपदरा रिफाइनरी रा कामारी प्रगति रो जायजो लीनो। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रा आला अहलकारा सागे भी मीटिंग माए कंपनियां रा नुमाइंदा बतायो के 1 जून कमीशनिंग रा काम शुरू कर दिया चावेला। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश माए पेंशन लेवन वाला ज्या लोगों रो हाल ताई सत्यापन नहीं करायो जा सक्यो है वारो आवता 15 दिन माए सत्यापन करायो जावेला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत आज जयपुर माए न्यारी न्यारी योजनावा रा काम रो जायजो लेवन सारू अहलकारा सागे राखी जी मीटिंग माए ए हुकम दीना। वह कहो के राज्य माए करीब 89 लाख लोगों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। जामायों 96% रो सत्यापन कर लियो चियो है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA री टीमा आज अजमेर नीमराना

0: अलकामाय कुछ ठोड़ा छापा मारिया। NIA री न्यारी न्यारी टीमा अजमेर शहर और नीमराना रा कुछ हलका माए शंका वाली ठोड़ा कागजात इलेक्ट्रॉनिक और दूजी सामग्री री जांच कीनी और जरूरी पूछताछ करी जी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 रा तहत राज्य रा न्यारा न्यारा जिला माए पानी और आबो हवा ने बचावन सारू मोटा पैमाना माथे जाग जगावन रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर कने नींदड़ माए पानी बचावन रा कामा रा तहत श्रमदान कीनो। ई मौके वे वन विभाग री ओरों इको ट्रेल ट्रैक रो उद्घाटन कीनो। कार्यक्रम माए वन मंत्री संजय शर्मा ही मौजूद हा। सवाई माधोपुर जिला री अमरगढ़ ग्राम पंचायत माए कलश यात्रा पीपल पूजन और पौधारोपण सागे परिंदा सारू परिंडा बांधी जिया। जैसलमेर जिला री भणियाणा पंचायत समिति माए पीपल पूजन करी जियो और महिलावां मंगल गीतां सागे कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिला रा चिड़ावा हलकारा बिलावड़ी जोहड़ माए श्रमदान कर और पानी बचावण रो संदेश दियो चियो। ई मौके जिला कलेक्टर अरुण गर्ग कहो के ई अभियान रो मकसद जनता माए पानी और पर्यावरण ने बचावण सारू जाग जगावण सागे वारी भागीदारी बधावण है।
1: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण इसके बारे में और बेहतर स्थितियां होगी, लोग इससे जुड़ेंगे। मेन समस्या पानी की बताई गई है, पानी लेकिन ये बताया ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं है, तो जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि जो इतनी मेहनत से लोगों ने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को बचाया जाए। समय लगेगा लेकिन मुझे विश्वास आने वाले समय में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
0: अभियान रा तहत सिरोही माए CSR कार्यशाला राखी ची। इन माए अभियान रा मकसद पानी बचावण जुड़िया काम और जनता री भागीदारी रे बारा माए विगतवार चर्चा करी ची। चूरू और पाली समेत न्यारा न्यारा जिला माए जल चौपाल साफ सफाई रा अभियान तलावा और जोहड़ा नी साफ सफाई और पानी बचावण रे शपथ दिरावण रा कार्यक्रम राखी चिया। अरब मौसम प्रदेश रा न्यारा न्यारा हलका माए आंधी बारिश रे कारण पारो थोड़ो उतरणु तपन कम भी है। दोपहर पाछे कई हलका माए तेज हवा चालन आंधी आवण और कठे कठे हल्की बारिश रा समाचार है। इन बीच जैसलमेर और फलौदी समेत कई जिला माए आज ही तेज तावड़ो पड़ियो। मौसम केंद्र जयपुर आज आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए बढ़ोतरी भेवण सागे। बीका माए कठे कठे तेज अंधड़ और बिरखा सागे कुछ जगह ओला पड़बार आसार जताया है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो के काली राज्य रा घनखर हलका माए आंधी बारिश रो सिलसिलो चाल तो रहवन रा आसार है।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में सक्रिय हुआ है। इसके असर से अगले 2-3 दिन विशेष रूप से जयपुर भरतपुर अजमेर कोटा उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तेज गर्जन तेज आंधी अंधड़ और इसके साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इलाकों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी दर्ज की जा सकती है। इसके बारिश के असर से आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और ज्यादातर इलाकों से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना।
0: केंद्र सरकार सोशल मीडिया में से चल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वां वीडियो ने गलत बतायो है, जिनमें इटली री प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जुड़िया मनगढ़ंत दावा और ईरान अमेरिका बीच मध्यस्थता रा बारा में टिप्पणियां शामिल है। पत्र सूचना कार्यालय री तथ्य जांच इकाई रा मुजब डिजिटल रूप बदली जिया वीडियो ने AI बनाई चियो है। PIB री फैक्ट चेक इकाई रा मुजब श्री मोदी एडो कोई बयान नहीं दिनो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज संसद भवन परिसर माए संसदीय कार्य मंत्रालय री हिंदी सलाहकार समिति री मीटिंग लीनी। इन दौरान सांसदां विधायकां और आला अहलकारां सागे सरकारी कामकाज में हिंदी ने असरदार तरीकां काम लेवण रे बारा

0: चर्चा करी छी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिशन मौसम रातेत मौसम और कोहरारी निगरानी सारू देश री पहली एकीकृत विमानन प्रणाली स्काई कास्ट रो आज नई दिल्ली रा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मथ उद्घाटन किन्नो। ई मौके वे कहो के ई नुआ सिस्टम रो मकसद हवाई अड्डा मथ मौसम री निगरानी और कोहरा रो सटीक अनुमान लगावण ने और मजबूत बनावणु है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल कहो है कि भारत ने साल 2047 ताई दुनिया री अगाड़ी माली व्यवस्था बनावण रो लक्ष्य नीचला लेवल मथ हर नागरिक ने मजबूत करिया बगैर हासिल नहीं करियो जा सके है। वे आज गुवाहाटी में पंचायती राज मंत्रालय का न्यू सेवा से समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। वे ग्राम लेवल मथ जनता ने मजबूत बनावण मथ जोर दिनो। श्री बघेल गांवाई हलका में लोगों की जिंदगी आसान बनावण सारू हर एक जना ताई सार्वजनिक सेवावां री पूर्ति तय करण बाबत कहो। वे कहो कि गांवां में हर एक जना ताई सुशासन और न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो पुगावण में साझा सेवा केंद्र खास भूमिका निभाई है। आखिर में खास समाचार एक फिर सुन ले रहो। सुप्रीम कोर्ट देश की सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित राखी जिया फैसला 3 महीना री मियाद माए सुनावण रा हुकम दीना। पीएम सूर्य घर योजना रा तेत हाल ताई देश रा 40 लाख घरां री छता माथे सूरज री रोशनी बिजली बनावण री मशीना लगाई जी। प्रदेश माए सत्यापन नी करा सक्या पेंशन लेवण वाला रो आवता 15 दिन माए सत्यापन करायो चावेला। और राज्य रा कुछ हलका माए आंधी बारिश लू और तपन थोड़ो आराम मिलियो। आज और काल घनखर ठोणा आंधी बारिश और ओला पड़बा सारू चेताई चियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं साएं 7 बज चुके हैं, आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम खेती और घर।

0: राम राम रामा भाई, राम राम
1: राम राम रेखा भाई सा, राम राम खेती और घर वाला संगला किसान भाई ने भी अपनो
0: राम राम, राम, राम सा। देखो सा, कार्यक्रम में आया और अगला किसान भाई बहन अपने चौपाली बात में भी उन्हों वास्ते तैयार बैठा है सा कि अपना जो भी भाई बंधु जो आवे भी अपने वास्ते कई कई जानकारियाँ लेना आवे सा। तो आज आप वास्ते जानकारी लाया कि जो पर्यावरण संरक्षण में नवीकरणीय ऊर्जा रो कई महत्व है सा।
1: बिल्कुल सा, पर्यावरण संरक्षण के लिए नवीनकरण ऊर्जा रो उपयोग आज के समय में सबों बड़ी आवश्यकता बनी हुआ है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, वणों जलवायु पर्यावरण ने जो भारी नुकसान हुई रो है, इन्हें रोकवा के लिए नवीनीकरण ऊर्जा एक बेहतरीन और स्थायी विकल्प है।
0: देखो सा, यह जो ऊर्जा है वणा सब प्राकृतिक स्रोत प्राप्त हुए और कभी भी खत्म नहीं हुए, जो कि प्रकृति ने प्रदूषित भी नहीं करे सा।
1: बिल्कुल सा, देखो नवीनीकरण ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वहीं पे बात करें तो देखो सौर ऊर्जा है, जो कि सूरज की किरणों प्राप्त वाली जो ऊर्जा है, बिना पर सौर ऊर्जा के अलावा पवन ऊर्जा भी है, वहीं तेज हवाओं के माध्यम जो टर्बाइन चलाई ना जो ऊर्जा बनावा बिजली बनावा बिना क्या आप पवन ऊर्जा। अंडे अलावा देखो जल विद्युत ऊर्जा है, जो नदियाँ और बांधार बेहता पानी उत्पन्न वाली जो बिजली है उन्हें आप जल विद्युत ऊर्जा के वहाँ। बायोमास ऊर्जा है, जो कृषि अवशेष और जैविक कचरा और पौधों प्राप्त

0: जो ऊर्जा है बिना यहाँ पे बायोमास ऊर्जा के वहाँ और अंडे बाद अवे भूत तापीय ऊर्जा जो अपने जो पृथ्वी रे मायने जो गर्मी रो उपयोग करने वनी जावे बिना आप भूत तापीय ऊर्जा के वहाँ से
1: बिल्कुल सा। अगर पर्यावरण संरक्षण में अंडे प्रमुख जो लाभ है भी आप ही बात करा तो देखो सा ग्रीन हाउस में गैसारी कमी भी वैसा जीवाश्म ईंधन ने जलवों भारी मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड जिन्हें आप CO2 भी कहवा और मिथेन जैसी जो कैसा है वी भी निकले सा नवीकरणीय ऊर्जा रो सब बड़ो फायदो यो है कि अणु कार्बन उत्सर्जन शून्य या नीरे बराबर में वे जणियों की ग्लोबल वार्मिंग भी रोकवा में मदद मिले सा।
0: बिल्कुल सा। अंडे अलावा देखो वायु और जल प्रदूषण भी बचा हुए देखो कोयला या तेल आधारित जो ऊर्जा संयंत्रों में निकलवा वाला जो धुआं है वो जहरीली रसायन जो है वो हवा और पानी में दूषित करे जणियों का ये कि इंसाना और जानवर में कई गंभीर बीमारियां भी हो जाए। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत अणु में पूरी तरह स्वच्छ रहे और पर्यावरण में जहरों तत्वों ने भी बचाव ऐसा।
1: देखो साहब प्राकृतिक संसाधन और उन्हें संरक्षण की बात करा तो कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जिस तरह की ऐसा सब संसाधन सीमित है और एक दिन ही खत्म बेच सके सा तो सौर ऊर्जा है पवन ऊर्जा है जल ऊर्जा है अंडो उपयोग अगर आप ही भविष्य की पीढ़ियों के वास्ते करेंगा तो यो अनमोल प्राकृतिक संसाधन ने बचाई सका सा।
0: बिल्कुल सा। अंडे अलावा देखो जलवायु परिवर्तन जो है वहीं पर भी नियंत्रण होगा। दुनिया भर में बढ़ते तापमान बेमौसम वर्षा पिघलता ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन के कारण खतरनाक ये संकेत भी है। स्वच्छ ऊर्जा ने अपना ही ना आपा प्रकृति का संतुलन ने फिर आपा स्थापित कर सका और चरम मौसमी घटना ने आपा कम कर सका।
1: बिल्कुल सा। देखो कार्यक्रम में आया तो अगर आप ये ध्यान लगाऊंगा कि जो पर्यावरण संरक्षण के वास्ते जो नवीकरणीय ऊर्जा है वा कई कई स्रोत है और आप ही किस तरह काम में ले सका सा।
0: बिल्कुल सा। तो देखो रेखा भाई साहब या तो बढ़िया जानकारी दी दी आप और अभी आप बोलो तो बढ़िया सो संदेश भी हूँ और साथ में होना आप बढ़िया सो राजस्थानी लोकगीत।
1: हाँ सर।

0: तो रामा भाई, ये तो उन्हें मनभावन राजस्थान गीत और अबे अपने कार्यक्रम में और आगे बढ़ावा। और अगला किसान भाई बहनों, बात करें आप ही मौसम संबंधी
1: बिल्कुल
0: जानकारी।
1: सर। तो देखो सर, मौसम विज्ञान विभाग जयपुर आई सूचना के आधार पर मौसम काफ़ी गर्म और शुष्क रहने वाला है। मई रहा आखिरी हफ्ता में हिसाब तापमान में बढ़त भी देखी जा सके। अधिकतम तापमान की बात करें तो 41 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में, और दोपहर में टाइम पे तेज़ धूप और लू जैसी स्थिति भी बन सके। न्यूनतम तापमान की बात करें तो रात का समय पारो 27 से 29 डिग्री तक आवारी उम्मीद है, जिन्हें रात थोड़ी राहत मिल सके। आसमान पूरी तरह साफ और चमकदार धूप रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। हवा की गति की बात करें तो पश्चिम

0: उत्तर और पश्चिम दिशा में चलेगा और गर्म हवा चलेगा। और किसान भाई ने यह भी सलाह दवा कि देखो दोपहर 12 बजे 4 बजे के बीच में सीधी धूप में जावाऊँ बचनों है, और खुद ने मतलब अपा हाइड्रेट यानी कि पानी वानी पूरा पीने, अपने कटी धूप में भी निकलना है तो जानो ऐसा। अंडे अलावा देखो अगर खेत में अगर सिंचाई की जरूरत है तो पानी में जो वाष्पीकरण बचवा रहे बात है सुबह या पचे शाम के समय अपने सिंचाई करनी है सर।
1: देखो सर, सामान्य जानकारी भी आप ही बतावा तो मिट्टी में नमी ने बनाए रखवा रहे वास्ते अपने पंक्तियाँ रे वच में जो सूखी घास है इन्हें फसल ने अवशिष्ट अपने उपयोग करना है। गर्म हवाओं बचाव रे वास्ते खेतरी सीमा ने विंड ब्रेक स्ट्रिप्स या जूटी जाली अपने लगानी है सर।
0: बिल्कुल सर, बात करें आप गेहूरी तो अनाज भंडारण ने रखवा लिए भंडार घर ने अच्छी तरह सफाई करने और अनाज ने अच्छी तरह सुखाई लेनी चाहे। अन्य बात भी ने जो अपने जो कूड़ो कचरों वालों है विने जलाई ने या चिरकड़ी दवाई ने नष्ट करना है। दाना में नमी 12% तो ज़्यादा नहीं होनी चाहे और भंडावरण के लिए छत दीवार या वजह फर्श में एक भाग मिथाइल 50 EC या 100 भाग पानी में मिलने छिड़काव करना है। और यदि आप पुरानी बोरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्होंने एक बार एक भाग मेला थायोन या 100 भाग पानी में गोल मिलेंगे 10 मिनट तक उन्हें मायने रखनी है और पचे उन्हें छाया में सुखाई लेनी है सर।
1: देखो सर, बात करें आप ही मूंगरी तो अंडी सिंचाई रे टाइम भी अपने मूंगरी फसल फूल आवा पे या फली बनवारी अवस्था में भी तो अड़ी अवस्था में अपने नमीरी कमियों पैदावार घट सके सा तो अंडे वास्ते भी अपने हल्की सिंचाई टाइम टाइम पे करनी है सर।
0: बिल्कुल सर, बात करें आप कपास की तो अणी हफ्ता किसान कपास की बुवाई के लिए खेता में खेत में तैयार कर लेना चाहे और गुणपत्ता पूर्ण प्रमाणित बीज कणी विश्वसनीय जो स्रोत है वटाउंस खरीदना है आप। अंडे अलावा बात करें बेल वाली जो सब्जियां हैं तो कुष्मान कुंडी जो सब्जियां हैं जिस तरह लाल भूख कीट अंकुरित में नई पत्तियाँ आई ने खाई ने अपने फसल ने हानिकारक पहुँचावे तो उनकी रोकथाम के लिए कार्बेंडीजिम 5% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टर की दरों सुबह या शाम रो भुड़काव करना है सर। बात करें आप जायद मूँगफली दी तो खरपतवार प्रकोप नियंत्रण करवा के लिए उचित पेगिंग और एक इंटरकल्चरल ऑपरेशन द्वारा अपने हाथों गुड़ाई करवा दी आवश्यकता है सर। बात करें आप भिंडी दी तो तेज हवा चलवा रहे संभावना ने देखते थका किसान भाइयों ने भिंडी व जो दूसरी सब्जियाँ हैं उन्होंने तुड़ाई करवा दी सलाह दी जावे ताकि संभावित नुकसान बचो जावे। और अब चलते आणी में ग्रीष्मकालीन हरा चारा की बात करा तो गर्मिया में महीना में हरा चारा की कमी वैसे भी आम बात है। आणी वास्ते हरा चारा वाली जो फसल है जैसे ज्वार है बाजरा है मक्का है लोबिया है अनारी बुवाई अपने कर देनी चाहे सा। तो देखो सा या तो वही बढ़िया सी मौसम की जानकारी दी थी तो वही हिसाब किसान भाई समझ सके कि अपने आगे वाला धन में कहीं करना है और अबे किसान भाई ना बढ़िया सो रास्ता नहीं लोग की थोड़ा मसाला।
1: हाँ सर।

0: तो रामा भाई हो तो उन्हें आप ही मन भावन राजस्थानी गीत और अबे आपने कार्यक्रम में और आगे बढ़ावा और आगला किसान भाई बहनों आप योजना पे बात करा तो योजना आज आप ही लेना आया जल जीवन मिशन।
1: हाँ साहब, जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और जन केंद्रित योजना है। अंडी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 ने की ही। अणि मिशन रो मुख्य उद्देश्य देश रा ग्रामीण इलाका में हर घर एक सुरक्षित और पर्याप्त पीवार पानी मिले, यो यानी मिशन रो मूल मंत्र है कि कोई भी पाचन नहीं छूटे।
0: देखो सा अणि मिशन रो मुख्य लक्ष्य कही है, अणि पे भी आप ही बात करा तो अणि मिशन रो सब प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण भारत रे प्रत्येक परिवार ने जो आप ही के वहाँ की कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करनो है। अंडे तहत प्रत्येक व्यक्ति ने प्रतिदिन 55 लीटर साफ पानी उपलब्ध कराव में मानक भी तय किए गए।
1: बिल्कुल सा, यो मिशन सिर्फ पाइपलाइन बिछावर तक सीमित नहीं है बल्कि एक यो सुनिश्चित करे कि नल में आवा वालो पानी नियमित वे और वंडी गुणवत्ता पीवा योग्य हो। ऐसा
0: बिल्कुल सा, देखो जल जीवन मिशन रा अगर आप ही और भी स्तंभ री बात करा तो यो जो मिशन है पानी री सप्लाई रे साथ साथ जल संरक्षण ने भी आपस में जोड़े। अंडे प्रमुख कार्य री भी अगर आप ही बात करा तो जो घरेलू नल कनेक्शन है वो हर ग्रामीण घर, स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक भवन में पीमा योग्य जो पानी है वंडा कनेक्शन देना है सर।
1: हाँ सर, स्थानीय जल स्रोतों विकास करना है, जटे पानी की कमी है वटे नया कुआ, बोरवेल या पचे तालाब बनाना है और पुराना जल स्रोत ने वापस पुनर्जीवित करना भी अंडो एक मुख्य उद्देश्य है। अंडे अलावा देखो जो ग्रे वाटर प्रबंधन है, जो घरों निकलवा वालों जो इस्तेमाल किए हुए पानी है, जिस तरह के अपने रसोई और नावारो पानी जो है वो साफ करने दोबारा खेतों में सिंचाई या भूजल रिचार्ज के लिए उपयोग में ले सका अंडे, तो यो भी आप कर सका सा।
0: देखो सा जल री गुणवत्ता री बात करा तो अणि में जांच भी जरूरी है तो पानी जनित जतरी बीमारी आए वणो बचवारे वास्ते गांव में महिला ने फील्ड टेस्ट किट यानी FTK भी दियो जावे ताकि वे खुद पानी री शुद्धता ने जांच कर सके।
1: बिल्कुल सा, देखो सा अणि में कही है कि देखो पर्यावरण और ग्रामीण जीवन रूपी अंडो बढ़िया मतलब अंडो प्रभाव पड़े कि देखो जल जीवन मिशन केवल पानी की किल्लत दूर नहीं करें बल्कि गांव, समाज और पर्यावरण में भी बड़ा बदलाव लावे ऐसा।
0: देखो सा महिला रे सशक्तिकरण भी ग्रामीण क्षेत्र में पानी लावारी जो जिम्मेदारी है वो सदियों आप ही देख रहे हैं कि बेना पे वे बहुत सारी जगह पे खूब किलोमीटर पैदल भी चालना पड़े तो बड़ी स्थिति में समय और श्रम दोहरी बचत हुए वे तो यो भी बेहद बढ़िया है सा।
1: अंडे अलावा देखो स्वास्थ्य में भी सुधार हुए कि देखो दूषित पानी पीने वाला जो बीमारी है जिस तरह हैजा है, डायरिया है, टाइफाइड है, अणि में भी भारी कमी आई है। साफ पानी मिलवाऊँ विशेषकर बच्चा ने स्वास्थ्य संबंधी जो है वो

0: बेहतर भी जो है। अंडे अलावा देखो सामुदायिक भागीदारी की बात करा तो यह योजना सिर्फ थोपी तक की योजना नहीं है, बल्कि यानी में जन आंदोलन भी बनाए गए हैं। हर गांव में पानी एक समिति बनाई गई है, जड़ी में कम उकम 50% महिला है, और यह समिति तय करे कि गांव रो पानी रो प्रबंध किस तरह होगा और पानी रो टैक्स कतरो रखे जाए वैसा है।
1: बिल्कुल सर, देखो सर, या तो आप ही बात की दी कि जल जीवन मिशन कहीं है और यूँ आप ही किस तरह जुड़ सका सा। अब एक कार्यक्रम में आया हाँ तो क्यों नहीं एक राजस्थान गीत और होना ही था सा।
0: हाँ सर।
2: माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे, आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
3: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: तो रामा भाई उतोनियो मनभावन राजस्थानी गीत और अब अपने कार्यक्रम ने और आगे बढ़ावा और आप ही बात करा भोजन में फाइबर उपयोग कई करना चाहिए।
1: बिल्कुल सा देखो भोजन में फाइबर यानी फाइबर यानी कि रेशा अपने आहार रो एक असो अनिवार्य हिस्सो है जनी में अपनो शरीर पचा तो नहीं सके लेकिन ये अपने पाचन तंत्र ने दुरुस्त करवा वास्ते कई गंभीर बीमारियों ने बचाव वास्ते बहुत जरूरी है। यो मुख्य रूप पौधाओं मिलवा वाली खाद्य पदार्थ जिस तरह अनाज है दाला है।

0: फल लें और सब्जियों में पाए जावे ऐसा। सरल शब्दों में कहवा तो फाइबर अपने पाचन तंत्र के लिए एक झाड़ू की तरह काम करे, जो अपने पेट और आंतरिक सफाई करवा में बहुत ही मदद करे सा।
1: देखो सा, फाइबर की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं अंडा प्रकार भी बतावा। मुख्य रूप फाइबर दो प्रकार आवे वे और दो ही अपने शरीर में अलग अलग तरीकों काम करे सा। पहली बात करा आप ही घुलनशील फाइबर ही, तो यो पानी में घुलने एक जेली जैसो पदार्थ बनावे। यो मुख्य रूप ओट्स जिन्हें जई, सेब, अमरूद, कटाफल, बीन्स और दाल में पायो जावे सा। और अगर अघुलनशील फाइबर की बात करा तो यो पानी में नहीं घुले, भोजन में भारी पड़ने बढ़ावे और यो साबुत अनाज, चोकर युक्त आटा, भूरा चावल, हरी पत्तेदार सब्जियां और फल रे छिलकों में वेसा। तो ये मुख्य रूप कब्ज ने दूर करवा में और पेट साफ करवा में भी मदद करे सा।
0: बिल्कुल सा, भोजन में जो अपने फाइबर है वंडा जो लाभ है मणि पे आप बात करा तो देखो, आहार में पर्याप्त मात्रा में फाइबर शामिल करवाऊ शरीर में अपने जादू फायदा मिले, जिस तरह की पाचन क्रिया दुरुस्त और कब्ज में राहत मिले। फाइबर जो है वो मन ने नरम बनावे और आतारी वनी में गति ने आसान करें और वनी में पुरानी पुरानी जो कब्ज है या बच्चे गैस की समस्या है वह जड़ों खत्म भी होवे। अंडे अलावा देखो बवासीर जैसा खतरा ने भी यह कम करें ऐसा। और देखो वजन नियंत्रित रखने की बात करें तो देखो ये वजन नियंत्रण में भी काफ़ी मददगार है। फाइबर युक्त भोजन ने चबाव में अधिक समय लगे और पेट में जाने यो फूल भी जावे, जनियो कही है कि पेट लंबा समय तक अपने भरे भरो महसूस हुए। वनियो नतीजो यो है कि आप अपने जो अतिरिक्त कैलोरी खावा रही हूँ आप वस सका और जनियो कही है कि वजन घटावा में भी आसानी होगा सा।
1: देखो सा, बात करें आप ब्लड शुगर या मधुमेह नियंत्रण भी, तो घुलनशील फाइबर भोजन में पचवा पे ग्लूकोज यानी चीनी रा अवशोषण की प्रक्रिया ने धीमो कर देवे। अन्य खाना खावारे बाद में खून में शुगर वो स्तर अचानक नहीं बढ़े, जो कि टाइप 2 डायबिटीज रे वास्ते मरीजा रे वास्ते बेहद फायदेमंद वे सा।
0: बिल्कुल सा, यो दिल रे जो मरीज है वनार वास्ते भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखो फाइबर शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल जो है इन्हें बांधना शरीर बाणे निकालवा में मदद करे और कोलेस्ट्रॉल कम करवाऊंगा ये कि दमनिया साफ भी रहे, जनियो हाई ब्लड प्रेशर और दिल का दौरा ने खतरा भी काफ़ी कम हो जावे सा। अंडे अलावा देखो आतार लिए जो अच्छा बैक्टीरिया है वनारो भोजन भी है। देखो अपनी आतार लिए लाखों अच्छा बैक्टीरियल है जो अपनी रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ावे सा। तो फाइबर अना बैक्टीरिया और मुख्य भोजन भी है तो यो स्वस्थ आता सीधे तौर पर अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी जुड़ी हुई सा। अंडे अलावा देखो जो फाइबर है वो एक बेहतरीन स्रोत भी है, जो अपनी थाली में प्राकृतिक और साबुत चीज़ों ने शामिल करना चाहे, जनू कहे कि जिस तरह खाद्य श्रेणी की बात करें तो अनाज है, मोटा अनाज है, चोकर समेत गेहूं रो आटो है, बाजरा है, रागी है, ओट्स है, दलिया है या पचे ब्राउन राइस है, अना ना अपने खाने खावा में शामिल करना चाहे। अंडे अलावा देखो बात करें आप दाला और फलियारी तो छिलका वाली मूंग और उड़द की दाल, चना है, राजमा है, लोबिया है, मटर है, ये भी अपने खावा में नियमित रूप अपने सेवन करना चाहे। फल और छिलका फल जो है वह अपने छिलका समेत खाना चाहे, जिस तरह की अमरूद है, सेब है, नाशपाती है, पपीता है, संतरा है, अनाने अपने ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहे अपने खावा में। सब्जियाँ की बात करें तो हरी पत्तेदार जो सब्जियाँ हैं जिस तरह पालक है, मेथी है, ब्रोकली है, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, भिंडी है, अनान में भी अपने नियमित रूप अपने सेवन करना चाहे सा।
1: बिल्कुल सा, और ध्यान यो भी रखना है कि अणी गर्मी रा मौसम में अपने पानी पर्याप्त पीणो है और अगर कोई भी बदलाव अगर आप ही कर रहे हैं तो धीरे धीरे प्राकृतिक रूप अपने वणी बदलाव ने अपनाना है सा।
0: बिल्कुल सा, तो देखो या तो ये बढ़िया सी जानकारी और अब हूँ एक और बढ़िया सो राजस्थानी गीत सा।
1: हाँ सर।

0: तो रामा भाई यो तो हुन्यो मन भावन राजस्थानी गीत। और देखो सा बात करें आप ही प्रमुख दिवस री कदी पुण्यतिथि री या जो भी कई दिवस वे तो आप ही सभी श्रोता ने बतावा कि आज जो दिवस है चौधरी चरण सिंह री पुण्यतिथि। और आप ही बात करा कि किसान नेता भारत रा पांचवा प्रधानमंत्री और किसान रे मसीहा क्या भी किया जाता उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी रो जो निधन है वो 29 मई 1987 ने भी हो पड़ा। अपना पूरा जीवन कृषि क्षेत्र में सुधार किसान रे अधिकार जमींदारी री प्रथा ने खत्म करवा में लगी दी दो। और किसान जो है अपना अन्य अन्य प्रति जो समर्पण री वजह बड़ा ने भारत रत्न भी सम्मानित की दो। और आज राधन देश बड़ा ने अड़ा कार्य ने नमन करे और आपा सब भी नमन करा सा।
1: बिल्कुल सा, देखो सा यह तो बढ़िया जानकारी दी थी। और देखो आज विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस भी है तो जो यो हर साल 29 मई ने पूरी दुनिया में मनाया जावे है। अंडो मुख्य उद्देश्य यो है कि लोगों ने पाचन तंत्र जुड़ी तक जो बीमारी है वंडा लक्षण रोकदाम और सही खान पान प्रति जागरूक करना है। अणी लिए आप यो हर साल 29 महीने यो पूरी दुनिया में मनाया जावे है। और देखो रेखा भाई साहब जानकारी तो आप अच्छी दी थी। अब चलता चलता एक और बढ़िया सो राजस्थानी गीत सुनावा अपने किसान भाई ने।
0: हाँ सर।

0: तो देखो रेखा भाई साहब, बहुत ही बढ़िया राजस्थानी लोक संगीत होनी आपा। और अब देखो घड़ियाड़ी आपा देखा तो अपने चाल वालों टेम भी वही हो सा, तो चला सा
1: जय जवान
0: जय किसान।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी किसान भाइयों ने सुना उनका पसंदीदा कार्यक्रम खेती और घर। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

जिंदगी भी बड़ी अजीब किताब है, हर पन्ने पर इसके नया हिसाब है। किसी को मिल जाती है मोहब्बत उम्र भर की, तो किसी की मोहब्बत ही उसकी याद है। श्रोताओं, स्वीकार कीजिए आपकी दोस्त संगीता का प्यार भरा नमस्कार। फिल्म संगीत के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है और हम सुनने जा रहे हैं कुछ बॉलीवुड के हिट सॉन्ग्स जो आपकी और मेरी पसंद के हैं। श्रोताओं, उससे पहले कुछ बातें हम आपसे करना चाहते हैं कि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है, ऐसी घड़ी होती है लाइफ में कि हम कभी कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, और हम खो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कभी कभी वक्त बहुत लंबा इम्तिहान लेता है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि कभी ना कभी रात की सुबह ज़रूर होती है और उजाला ज़रूर फैलता है। इसी उम्मीद को ज़िंदगी कहते हैं, और ज़िंदगी तो हम जीते ही हैं, पर जब हम कुछ संगीत में नगमे गुनगुनाते हैं तो सारा तनाव, सारा दर्द कहीं गायब हो जाता है और हम कुछ पल के लिए सुकून महसूस करते हैं। तो सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप हैं आपकी दोस्त संगीता के संग। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचाएं, उससे पहले हम बात कर रहे थे जिंदगी में वक्त की। कहते हैं वक्त ही एक ऐसा मरहम भी होता है जो हर गम को भुलाने में हमें सहायता करता है, और वक्त ही ऐसा नासूर भी होता है जो कभी किसी दर्द को मिटने नहीं देता। तो ये वक्त का ही सिलसिला है और ये वक्त का ही कारवा है। हमारी ज़िंदगी वक्त पर ही निर्भर है, तो हमें हर वक्त मुस्कुरा कर ही गुजारना है, चाहे खुशी हो चाहे गम हो। जब हम दिल से महसूस करते हैं कि सब अच्छा होगा और अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देते हैं, तो सब सच में अच्छा ही होता है। तो ज़िंदगी को भरपूर जिए और खूब खुश रहें, मुस्कुराते रहें और साथ में गुनगुनाते रहें।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में ये सुल्तान फिल्म से ये गीत। उससे पहले फिर से आपसे रूबरू होते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कैसा भी वक्त हो, चाहे कैसी भी मुश्किल हो, चाहे कैसी भी घड़ी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बढ़ते जाना है और हर डगर को पार करना है। क्योंकि जब हम अपना फर्स्ट स्टेप उठाते हैं किसी भी मुश्किल की तरफ, जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो सोचना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। जब हम हर मुश्किल का हल ढूंढते हैं या मुश्किल को कैसे ओवरकम करें उसके बारे में सोचते हैं, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और उस मुश्किल को जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो मैं लगता है कि उतनी बड़ी भी बात नहीं थी जब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन जब किसी चीज़ को हम ओवरथिंक करते हैं तो बातें बहुत बड़ी लगती हैं। सुनते रहिए आपकी दोस्त संगीता के संग फिल्म संगीत।

श्रोताओं, बात कर रहे हैं फिल्म संगीत के साथ हम जिंदगी और वक्त की। तो वक्त कैसा भी हो, गुजर ही जाता है। हर लम्हा हमें याद आता है जब वो गुजर जाता है, और यही वक्त की बहुत खूबसूरत बात भी है। जिंदगी छोटी है जनाब, इसे हंस कर बिताइए। जो दिल के करीब हैं उन्हें बेपनाह मोहब्बत जताइए, क्योंकि कहते हैं ना कि वक्त गुजरता ही रहता है, रेत की तरह हमारे हाथों से फिसल जाता है। जब हम देखते हैं कि बच्चे हमारे पास होते हैं तो हम बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं कि बच्चे सोने नहीं देते, बच्चों का सुबह उठ के टिफ़िन बनाना होता है, बच्चों की ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कभी उनके एग्ज़ाम्स हैं तो आप बाहर नहीं जा पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें लगती है कि हमारे साथ पाबंदियां हैं, लेकिन जब वही बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं तो घर एकदम सूना हो जाता है। तो यही वक्त की बात है कि वक्त जब हम बच्चों के साथ गुजारना चाहते हैं तो वो हमारे पास नहीं होते, और जब वो हमारे पास होते हैं तो हमें परेशानी लगती है। तो मेरा कहना ये है कि ज़िंदगी का हर लम्हा, जो प्रेजेंट पल है, जो आज है आपका, वो खुशनुमा दिए। अगर बच्चे आपके पास हैं तो भी, और नहीं हैं घर से दूर हैं तो भी, वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वो रेत की तरह फिसलता रहता है, उम्र ऐसे ही निकल जाती है। तो जो ख्वाहिशें आपकी अधूरी रह गई हैं, वो बच्चे जब नहीं हैं घर पे तो उन्हें पूरा करिए, और जब बच्चे घर आते हैं तो उनके साथ भरपूर जिए। जो जो उनको खिलाना चाहते हैं, जो बातें उनके संग करना चाहते हैं, रातों को जगना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो करिए, लेकिन शिकायत ना रखें, क्योंकि वक्त तो है जनाब, गुज़र ही जाएगा। और साथ में सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए खूबसूरत से बॉलीवुड हिट ट्रैक्स।

फिल्म संगीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप जुड़े हैं आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से और मैं हूं आपकी होस्ट और आरजे संगीता। श्रोताओं, जिंदगी बहुत खूबसूरत एहसास है। कभी कभी देखते हैं ना कि जिंदगी की जीने की इच्छा, जिजीविषा जिसे कहते हैं, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि मरणासन्न आदमी भी जिंदा हो जाता है। लेकिन कभी कभी आदमी जब अंदर से टूट जाता है, इंसान जब अंदर से खालीपन महसूस करता है, उसे कोई अच्छा नहीं लगता और वो ज़िंदगी हार जाता है। तो कभी भी ऐसा ना करें। ज़िंदगी भगवान की दी हुई वो नेमत है जिसे इंसान को इंसानियत के लिए ही गुजार देनी चाहिए। अगर आपको कहीं कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो कहते ना कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कोई ना कोई एक दरवाज़ा ज़रूर आपके लिए खुला होता है। बस ज़रूरत है उस दरवाज़े को हिट करने की, उसको खोलने की कोशिश करने की। तो वो कोशिश जारी रखें और सुनते रहें फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में अभी आपने सुना ये गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में आशिकी टू से। हम जिंदगी और वक्त की

बातें कर रहे हैं। आप हैं आपकी होस्ट और आरजे संगीता के संग। तो श्रोताओं, वक्त की बात है और वक्त की ही बात है, क्योंकि कहते हैं कि जब अच्छा हो या बुरा हो वक्त कटता ज़रूर है, लेकिन ये है कि बुरा वक्त देर से कटता है, धीमा कटता है, लेकिन अच्छा वक्त बहुत जल्दी बीत जाता है। और ऐसा कभी नहीं होता कि किसी की लाइफ में वक्त करवट ना ले। तो वक्त की करवट का इंतज़ार करिए, और इंतज़ार ऐसे करिए कि बुरा वक्त भी आसानी से कटे। मीन्स हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए अपने आसपास। जब हम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखते हैं, कहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी हम अपने एटमॉस्फेयर को, अपने वातावरण को देते हैं, वही हम तक लौट के आती है। तो इस जहां में हमेशा खुशियां बटोरिए और खुशियां बिखेरिए। तो जब आप खुश रहेंगे, आप अंदर से पॉजिटिव एनर्जी के साथ भरपूर रहेंगे, तो ऐसा कोई वक्त नहीं है जो कटेगा नहीं और जो अच्छा नहीं कटेगा। तो इसलिए पॉजिटिविटी इज़ द की ऑफ द खुशी। तो सुनते रहिए हमारे संग फिल्म संगीत।

0: shine like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: आतिफ असलम और अलीशा चिनॉय के गाए इस गीत के साथ ही हम फिल्म संगीत को अब यहीं देते हैं विराम, और साथ ही दीजिए आपकी दोस्त संगीता को भी इस कार्यक्रम से इजाज़त। श्रोताओं, मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर, और आइए अब जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी में और फिर न्यूज़ एट 9 अंग्रेजी में।
2: नमस्कार, नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में, और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे, और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे, और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे।
2: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
4: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। तो हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
2: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
5: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने

0: के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर

पत्रिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरूआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस एकेडमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आपका स्वागत। स्वीकार कीजिए आपकी रेडियो दोस्त संगीता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुगम संगीत इतना मधुर संगीत, संगीत वैसे भी मधुर ही होता है, लेकिन ऐसा संगीत जो सुनने में मधुर, सरल और आम लोगों के लिए आसानी से समझ में आने वाला हो। मधुर और इसकी सरल धुनें होती है भावनाओं को बहुत आसानी से और बहुत गहराई से जो व्यक्त करता है, उसे सुगम संगीत ही कहते हैं। इतना मधुर होता है ये कि दिल की तारों को झुनझुना जाता है। तो आइए सुनते हैं सुगम संगीत में जगजीत सिंह की कुछ प्यारी सी कसें।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मीडियम वेव 266.66 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, अभी हमने आप तक पहुंचाया सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें हमने सुनी जगजीत सिंह की कुछ गजलें। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत में बहुत सी मधुर रागें होती हैं, बहुत से इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक्स होते हैं, लेकिन हम आज आपको पहुंचा रहे हैं राग पराज बसंत। सरोद पे इस राग का क्लासिकल म्यूज़िक आपको सुनवाएंगे, और ये शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम शुरू करते हैं राग बसंत का पराज वादन।

श्रोताओं, अभी हम आप तक पहुंचा रहे थे राग पराज वसंत, जिसे सरोद पर संवारा था उस्ताद अलाउद्दीन खान ने।

0: 90.
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, रात्रि 10 बज चुके हैं। अभी हमने आप तक पहुंचाया शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आरजे संगीता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वो कौन थी फिल्म से। आवाज़

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उदयपुर के संग। कार्यक्रम का अगला गीत मोहब्बत रफ़ी की आवाज़ में चौहतवी का चांद हो फिल्म से।
1: Mm-hmm.

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी उदयपुर के संग, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट संगीता। अभी हमने आप तक पहुंचाया फिल्म अनामिका से ये गीत लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है सरस्वती चंद्र और मुकेश की आवाज़ है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मीरा साया फिल्म का ये गीत जिसकी आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में ये मधुर सा गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना आशा भोंसले को फिल्म ज्वेल थीफ से। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चरस से ये दो गाना। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: हाँ, गुड नाइट।
2: अच्छा, गुड नाइट।

बहुत ही खूबसूरत दो गाना हमने अब तक पहुंचाया। फिल्म चरस से ये गीत था और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नमक हलाल से बप्पी लहरी और आशा भोसले की आवाज़ों में। बप्पी लहरी का संगीत है।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

मीडियम वेव 266.66 मीटर पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, आपकी दोस्त और होस्ट आरजे संगीता के संग। श्रोताओं, कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव तक ले जाते हैं और सुनवाते हैं आपको ये आखिरी गीत फिल्म तेजाब से नितिन मुकेश और शब्बीर कुमार, अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। अभी आपने सुना था डोंट टू फिल्म से ये गीत, जिसे आवाज़ दी थी अलीशा चिनॉय और सोनू निगम ने।

मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी उदयपुर से। श्रोताओं, रात्रि 11 बजने को है, आइए अब सुनते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, और 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी उदयपुर। श्रोताओं, रात्रि 11:10 हो चुके हैं और हम हमारी रात्रिकालीन सभा के प्रसारणों को यहीं देते हैं विराम। सुबह प्रातःकालीन प्रसारणों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ